FM के 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:54 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, अब हिंदी में समाचार के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

16 6:45 बस इन दिनों आप सुन रहे हैं संगीत सरिता में श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति है मनीषा जैन की। सुनिए इस श्रृंखला का 11वां भाग। भूले इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी, इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। आठ बजकर 30 मिनट पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक रूप कुमार राठौड़ पर, प्रस्तुति है रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत, प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे सुनिए सखी सहेली। 4 बजे हेलो फरमाइश। 5 बजे छाया गीत। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7 बजे जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए। निर्देशक इकबाल अली से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति है जुबैर खान की। 8 बजे हवा महल में सुनिए नाटिका कटते कगारे। लेखन है चंद्र भारद्वाज का, निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। 10 बजे सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। माफ कीजिएगा, 9 बजे आप सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, फिर 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत कार्यक्रम। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। झरोखा भी अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 2।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गई। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 216।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। ये है इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, बहुत से संगीतकारों की रचनाओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने रिदम पैटर्न के बारे में, ताल जो बज रहा है उसमें अपना कुछ दे करके, जोड़ करके एक नया पैटर्न बनाया है, नया रिदम पैटर्न देखने को मिलता है, वो उस गीत की जरूरत हो। जैसे आर डी बर्मन साहब का एक एल्बम है दिल पड़ोसी है, उसमें जो गीत है उसकी झलक पहले सुनते हैं।

0: दिल पड़ोसी है एल्बम से ये जो गाना था गुलजार साहब की रचना है, आशा जी के स्वर में हमने सुनी, और इस रचना में जो ताल बज रहा था वो स्वयं उस गीत के लिए आरडी साहब ने
1: कंपोज किया था
0: या उसे बनाया था, ये कह सकते हैं। ऐसे ही प्रयोग धर्मिता फिल्म संगीत के बारे में भी देखने को मिलती है।
1: बिल्कुल देखने को मिलती है, और देखिए कि फिल्मी गीतों का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य उसी वजह से आया है और वो उस गाने को चिरंजीवी बनाता है।
0: जी जी जी।
1: तो इसमें जब हम लोग ये रिदम पैटर्न की बात करते हैं
0: जी,
1: तब मुझे ये कहना बहुत ज़रूरी लगता है, जैसे संगीतकार होते हैं, अरेंजर होते हैं, तो उसी तरह से फिल्मों में रिदम कंपोज़र भी रहे हैं। अन्ना जोशी, मारुति कीर, भवानी शंकर, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका योगदान है कि जिस वजह से हमको ये इतने अच्छे अच्छे पैटर्न सुनने को मिले हैं। तो ये जो होता है, गाना जब बनता है तब गाने के साथ में उसका रिदम कैसा होना चाहिए, उसका रिदम पैटर्न क्या होना चाहिए
0: जी,
1: ये तय करने वाले ये रिदम के अरेंजर होते हैं, और वो किस वाद्य पे ये पैटर्न अच्छा लगेगा, कौन से वाद्य का उसमें प्रयोग करना उचित होगा, ये वो तय करते हैं।
0: अच्छा।
1: और उस वाद्य के ऊपर फिर वो जब पैटर्न बजता है तब जाकर वो रिदम अच्छा तैयार होता है, बहुत सुनने को अच्छा लगता है। तो रिदम का महत्व इसलिए है कि वो शुरू में ही उसके ऊपर काम किया जाता है, शुरू में ही उसके ऊपर सोचा जाता है कि ये गाने के लिए हम रिदम का पैटर्न किस तरह रखेंगे, इसमें वेरिएशन लाने के लिए कहाँ पर उसको मोड़ देंगे, कहाँ पर उसका वो मोड़ को फिर से और एक मोड़ देकर दूसरी राह पर या जो मूल प्रवाह है उसमें
0: जी,
1: लाएंगे
0: जी।
1: तो मूल प्रवाह से मोड़ लेकर जाना, फिर मूल प्रवाह में आना, ये सारी चीज़ें जो है वो रिदम पैटर्न के लिए वो अरेंजर तय करते हैं। तो ऐसे में देखो, जैसे तबले के साथ में ढोलक बजा, फिर वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ में तबला बजा, तो उसी तरह मल्टीपल आर्टिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कलाकार लेकर हम लोग मतलब एक अच्छा रिदम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ऐसा जब हमारे

0: प्रतिभाशाली संगीतकारों को लगा, तो उन्होंने क्या किया कि दो तबले की बजाय और चार पांच तबले, छह तबले, सात तबले ऐसे एक साथ बिठाए,
1: रिदम सेक्शन को बढ़ाया,
0: रिदम सेक्शन को बढ़ाया, जबकि मल्टीपल ट्रैक्स है लेकिन हर एक कलाकार जो है उसका बजाने का एक अपना लहजा होता है, उसका उस वाद्य के ऊपर का नियंत्रण अलग होता है। तो इसलिए चार पांच लोग जब एक साथ बजाते हैं तब वो चार ट्रैक एक ही आदमी से बनाने से कुछ अलग होता है, तो इसलिए चार पांच लोगों को बिठाकर एक साथ में एक पैटर्न उनको दिया जाता है और वो पैटर्न वो लोग बजाते हैं
1: जी।
0: और उसमें फिर गाना जब हम लोग सुनते हैं तो जैसे भोर भई पनघट पर मुहे नटखट श्याम सताए,
1: बहुत सुंदर रचना है,
0: उसका पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है और तबला भी एक साथ बजा हुआ है।
1: तो क्यों ना इस गीत की झलक सुन ली जाए।
0: बिल्कुल।

0: सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओं। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रविंद्र जी, इस विश्व की, इस दुनिया की एक लयबद्धता है
1: जी,
0: ऐसे ही हमारे जीवन के, सभी के जीवन की अलग अलग लय है। एक विशिष्ट लय में हम सब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कला के साथ, संगीत के साथ कैसे इसे जोड़ करके और समृद्ध किया जा सकता है?
1: जी, हमने इस पूरी श्रृंखला में ताल के बारे में बात की है
0: जी।
1: तो अब जब इसका समापन करने जा रहे हैं, तो जीवन का और ताल का कैसे संबंध है उसके बारे में बात करके मैं मेरी बात पूरी करना चाहूँगा
0: जी।
1: पूरी सृष्टि जो है उसमें एक ताल है। ये ताल जो होता है, वो ताल जैसे सूरज का रोज सुबह आना, शाम को सूरज का ढलना
0: जी,
1: फिर दूसरे दिन सुबह आना, तो ये एक प्रकार का चक्र है, ताल चक्र जिसे हम कहते हैं
0: जी।
1: सम है, काल है, फिर सम आई, फिर काल आया। तो उस तरह जीवन में हर जगह, मतलब सृष्टि में तो हर जगह आपको ताल खिलता हुआ दिखेगा। जैसे पृथ्वी जो है वो सूरज के
0: इर्द गिर्द चक्कर लगाती है,
1: तो उसमें भी एक ताल है
0: जी।
1: पूरे सृष्टि में जब अगर झरने से पानी बह रहा है तो उसकी एक मधुर नाद आती है, सुनाई देती है, उसमें भी एक ताल होता है
0: जी।
1: तो ऐसे हर जगह पर हमारा जो जीवन है वो पूरा तालमय है। घड़ी की टिक टिक जिस समय के साथ में हम लोग चलते हैं
0: जी जी,
1: वो भी एक ताल दर्शाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा

0: हृदय जो है
1: जी हाँ,
0: वो भी एक ताल में चल रहा है, और जब तक ये ताल हमारा सही चलता है तब तक हमारा जीवन भी सही चल रहा है। इसलिए हम लोग जो है ना शब्द प्रयोग करते हैं कि तालमेल बनाए रखो।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: तो तालमेल जो है ये मेल होना जरूरी है ताल का जीवन में, और वो मेल अगर अच्छे से होता है तो पूरा जीवन हमारा अच्छा होता है।
1: क्या बात है।
0: मैं अपने इस कार्यक्रम का समापन स्वर सम्राज्ञी लता दीदी, जिनके गले में हम लोग कहते हैं कि माँ शारदा बसी है
1: जी,
0: और जिनका गाना जो है वो अपने आप में एक ताल है, मतलब जैसे हमने कहा शुरू में कि सुर और ताल ये संगीत की बुनियाद है
1: जी,
0: और उसका मिलाप जिसमें बहुत अच्छे से होता है वो हमें सबसे ज़्यादा कर्णप्रिय लगता है, सबसे ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो लता दीदी का गाना हमें इसलिए अच्छा लगता है कि सुर और ताल इसका जो मेल उनमें है वो देखते देखते खुशी से जीवन भर जाता है।
1: जी जी। तो श्रोताओं को भेंट करने के लिए लता जी के स्वर में वो कौन सा गीत है?
0: पलकों की छाव में इस फिल्म का कोई मेरे माथे की बिंदिया।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर गीत है और एक निराला ही ढंग है इसमें ताल का, और वो प्रयोग धर्मिता की जो हम बात कर रहे थे
0: हाँ।
1: वो यहाँ हमें दिखाई देती है। आइए सुनते हैं यही गीत।

0: दर्शकों की छाओं में इस फिल्म से लता जी के स्वर में ये सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ सिने संगीत में तबले का दौर, ये श्रृंखला अब समाप्त होती है। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे आकाशवाणी के अश्रेणी संगीत रचनाकार, आकाशवाणी के ही आत्मीय श्री रविंद्र खासनीश जी। रविंद्र जी, विविध भारती के सुनने वालों की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से हम आपके हृदय से आभारी हैं।
1: जी धन्यवाद।
2: सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीश। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीष

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आवारा फिल्म के इस गाने के साथ, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बाजी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना गीता दत्त की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ए धन जवान।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना अफसर फिल्म से। सुरैया की आवाज में नरेंद्र शर्मा के बोल, संगीत है सचिन देव बर्मन का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप नौजवान फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: इस संदेश के पहले आप सुन रही थी सजा फिल्म का गाना। संध्या मुखर्जी हेमंत कुमार की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

स्वागत है आप सभी का इस प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम में और श्रोताओं आइए कार्यक्रम की शुरुआत इस सुविचार से करते हैं। डॉक्टर APJ कलाम के अनुसार नकली सुख के बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। इस सुविचार के बाद आइए जानते हैं आज का इतिहास।

श्रोताओं, आज है 11 जून। 11 जून 1866 में आज ही के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से इसे जाना जाता था।

11 जून 1964 में आज ही के दिन प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छानुसार उनकी अस्थियों की भस्म पूरे देश में बिखेरी गई थी।

श्रोताओं अब आइए जानते हैं उनके बारे में जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। 11 जून 1897 में रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आज ही के दिन 11 जून 1889 में मानसी जोशी का जन्म हुआ था, जो भारतीय राजनीतिज्ञ एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थी। 11 जून 1942 में पॉल रत्न स्वामी का जन्म हुआ था, जो तमिलनाडु भारतीय उत्प्रेरक वैज्ञानिक थे। और आज ही के दिन 1937 में कनक रेले का जन्म हुआ था, जो प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक कोरियोग्राफर और शिक्षाविद थीं।

श्रोताओं, भाई ये जानते हैं उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। 11 जून 2021 में सिद्ध लिंगैया का निधन हुआ था, जो कन्नड़ भाषा में लिखने वाले एक भारतीय कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता थे। 1997 में आज ही के दिन मिहिर सेन का निधन हुआ था, जो भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक थे। आज ही के दिन 1924 में वासुदेव वामन शास्त्री खरे का निधन हुआ था, जो मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध इतिहासकार, कवि, नाटककार और जीवनी लेखक थे। 11 जून 1970 में लीला नाग का निधन हुआ था, जो प्रसिद्ध बंगाली पत्रकार और महिला क्रांतिकारी थीं। आप सभी को विनम्र श्रद्धांजलि आकाशवाणी परिवार की ओर से।

श्रोताओं, भाई सुनते ही कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल और आरडी बर्मन का संगीत, आइए सुनें।

जिला पदाधिकारी रोहतास की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक दिनांक 10 जून 2026 को की गई। बैठक में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान अनुकंपा के आधार पर चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त 2 आवेदनों पर विचार किया गया, जिन्हें समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं गृह रक्षक यानी कि होम गार्ड के पद पर अनुकंपा के आधार पर नामांकन के लिए प्राप्त 2 आवेदनों को समिति ने स्वीकृत कर दिया। बैठक में संबंधित अधिकारियों को स्वीकृति मामलों की आगे की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया, ताकि पात्र आश्रितों को समय पर नियुक्ति एवं नामांकन का लाभ मिल सके। समिति ने अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी एवं त्वरित बनाने पर बल दिया। जिला जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन रोहतास के संयुक्त तत्वाधान में संचालित आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र रोहतास में सत्र 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। केंद्र में शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य, कथक एवं भरतनाट्यम तथा वाद्य यंत्र, हारमोनियम एवं तबला का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार के विभिन्न जिलों में संचालित आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्रों की तर्ज पर यह केंद्र भी स्थानीय प्रतिभाओं को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। नामांकन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा तथा प्रत्येक विधा में अधिकतम 40 छात्र छात्राओं का चयन होगा। 6 वर्ष से अधिक आयु के इच्छुक अभ्यर्थी जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण का प्रथम सत्र प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि दूसरा सत्र शाम 4 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय समाहरणालय परिसर सासाराम अथवा आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र महावीर स्थान सासाराम से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जिला कला एवं सांस्कृतिक कार्यालय समाहरणालय परिसर सासाराम में जमा करना होगा। जिला कला एवं सांस्कृतिक पदाधिकारी ने बताया कि कला एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए जिले के बच्चों एवं युवाओं से इस अवसर पर अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय हेल्पलाइन नंबर 9006229581 पर संपर्क किया जा सकता है। और श्रोताओं, अब आइए जान लेते हैं मौसम का हाल। आज सुबह सूर्योदय हुआ 5:01 पर और सूर्यास्त होगा 6:41 पर। आज दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने वाला है और रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री। दिन में निकलेगी तेज धूप, गर्म हवाओं के साथ लू चलने, कहीं कहीं तेज हवा के साथ वर्षा की भी संभावना है। और श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक और प्यारा गीत, तेरे मेरे सपने फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में नीरज के बोल और HD वर्मन का संगीत।

श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का हाल और साथ ही साथ मौसम का पूर्वानुमान। जिला जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार

बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, नीरज के बोल और एचडी बर्मन का संगीत। श्रोताओं भाई ये जान लेते हैं विभिन्न समाचार पत्रों में छाई आज की सुर्खियों को। चारों अखबारों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं जिनमें दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और प्रभात खबर शामिल है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेंशन नहीं पाने वाले बुजुर्ग जल्द आवेदन करें, आधार लिंक कराना जरूरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले बुजुर्ग, विधवा एवं दिव्यांगों के खातों में 1100 करोड़ रुपए भेजे, सबको 1100 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिए गए। मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड कार्यकाल 12 वर्ष का था। मुख्यमंत्री ने कहा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जिन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है वे पेंशन के लिए जल्द आवेदन करें। आधार कार्ड लिंक नहीं होने के चलते पेंशन नहीं पाने वाले लोग जल्द अपना आधार लिंक कराएं। सम्राट ने स्पष्ट किया कि अब हर महीने की 10 तारीख को यह पेंशन मिलेगा ही। हमारी सरकार गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। पेंशन की राशि 400 से 1100 रुपये प्रति माह की गई या दी जा रही है। दैनिक भास्कर की दूसरी सुर्खी है भूमि सुधार के लंबित आवेदनों के निपटारे को अभियान आज से। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि भूमि अभिलेख सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण एवं बंटवारा आधारित नामांतरण से जुड़े लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए राज्य भर के अंचलों में 11 से 17 जून तक विशेष अभियान चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राजस्व महाअभियान के दौरान कुल 46 लाख आवेदन मिले थे जिनका समयबद्ध निष्पादन लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पाया। 31 मार्च 2026 तक सभी आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया था, इसके बावजूद कई जिलों में कार्य को गति नहीं मिल पाया। विभागीय प्रतिवेदनों के अनुसार अब तक 18.91% आवेदनों की स्कैनिंग हुई है, जबकि केवल 26.43% आवेदन ही पोर्टल पर अपलोड हो सके हैं। अभियान में सभी आवेदनों की 100%

स्कैनिंग और अपलोडिंग पर प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद आवेदनों का यथासंभव निष्पादन किया जाएगा। अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी। विशेष सर्वेक्षण अमीनों की सेवाएं भी ली जाएंगी। मंत्री ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य के अधिकांश जिलों में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण अमीनों की सेवाएं भी ली जाएंगी। शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, जहानाबाद और अरवल को छोड़कर शेष जिलों के विशेष सर्वेक्षण अमीनों को स्कैनिंग, अपलोडिंग और निष्पादन कार्य में लगाया जाएगा, जिससे कार्यों में तेजी आएगी। इन 5 जिलों में सर्वे का कार्य 15 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रभात खबर की सुर्खी है, आज कहीं बादल छाए रहेंगे तो कहीं बारिश के आसार। बिहार में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकांश भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज गति की हवा चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश एवं कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का पूर्वानुमान है। गुरुवार को पटना, अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सुपौल, वैशाली और पश्चिम चंपारण में मेघ गर्जन एवं वज्रपात की चेतावनी दी गई है। कई भागों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, जमुई जिलों के भागों में दिन का तापमान 38 से 42 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य के अन्य भागों में अधिकतम तापमान 30 से 37 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पटना हाईकोर्ट को मिले 7 नए न्यायाधीश। पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी दूर करने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को 7 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश पद पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 एवं 224 के तहत इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है। अधिसूचना के अनुसार अधिवक्ता रंजन कुमार झा, कुमार मनीष तथा राजकुमार को पटना हाईकोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं राणा विक्रम सिंह और विकास कुमार, गिरिजेश कुमार और आलोक कुमार को 2 वर्षों की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सभी नियुक्तियां उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 फरवरी 2026 को पटना हाईकोर्ट में 9 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की थी। केंद्र सरकार द्वारा जारी ताजा अधिसूचना को में 7 नामों की मंजूरी दी गई है, जबकि मोहम्मद नदीम सिराज और संजीव कुमार की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना का इंतजार है। शपथ ग्रहण के बाद पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 से बढ़कर 44 हो जाएगी। श्रावणी मेला जुलाई से 28 अगस्त तक जगह जगह बनेंगी टेंट सिटी, ये खबर है प्रभात खबर का, माफ कीजिएगा, ये दैनिक जागरण की सुर्खी है। श्रावणी मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने श्रावणी मेला की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इसमें भागलपुर, मुंगेर, बांका और जिला पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पर्यटन सचिव ने कहा कि श्रावणी मेला 30 जुलाई से 28 अगस्त के मध्य आयोजित किया जाना है। इस दौरान कांवरियों के लिए टेंट सिटी, शौचालय, स्नानघर, शुद्ध पेयजल, निर्बाध बिजली जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं, कावर स्टैंड, सूचनाएं और मनोरंजन आदि की व्यवस्था की जानी है। श्रावणी मेला पथ को पूरी तरह शिवमय बनाने के लिए अभी से कार्ययोजना बनाकर कार्य को शीघ्र अंतिम रूप दें। बाबा अजगैबेनीनाथ मंदिर सुल्तानगंज से बिहार सीमा दुम्मा तक मेला पथ में जगह जगह भव्य गेट, विशेष लाइटिंग साज सज्जा की जाए। और श्रोताओं, अब आइए जान लेते हैं अर्थ जगत और खेल जगत का हाल। सबसे पहले जानते हैं खेल जगत का हाल। सबसे बड़े और भव्य फुटबॉल महाकुंभ का शुभारंभ आज से। 48 देश, 1248 खिलाड़ी एवं लक्ष्य एक फीफा विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी। वो ट्रॉफी जो आज एक सिर्फ 8 देश जीत पाए हैं। अमेरिका की उष्णकटिबंधीय जलवायु में जहां औसत तापमान 32 डिग्री रहेगा, वहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपने खेल से तापमान को और बढ़ाने के लिए जी जान लगा दे।

अगले 39 दिन तक दुनिया फुटबॉल के मैदान पर सिमट जाएगी। गुरुवार रात मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के भिड़ंत के साथ शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट का अंत 19 जुलाई को न्यूजर्सी में फाइनल के साथ होगा। अब तक की सबसे बड़े और भव्य फुटबॉल विश्व कप में सभी की नज़रें पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अर्जेंटीना के लियोन मेसी, फ्रांस के काइलियन एम्बापे और ब्राज़ील के नेमार पर सभी की नज़रें होंगी। और श्रोताओं, भाई जानते हैं अर्थ जगत का हाल। एजेंट बेचेंगे अनारक्षित टिकट, 29 स्टेशनों से शुरुआत। उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज मंडल के 29 स्टेशनों पर टिकट वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। अब इन स्टेशनों पर रेल कर्मचारी नहीं बल्कि स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट STBA कंप्यूटर के जरिए सभी पारियों में अनारक्षित टिकट बेचेंगे। इसके लिए रेलवे ने संविदा भर्ती निकाली है जिसमें युवाओं को कमीशन के आधार पर रोजगार मिलेगा। नॉन सवर्मन ग्रुप NSG 5 और NSG 6 कैटेगरी के स्टेशनों के लिए नियुक्ति पूरे 3 वर्षों के लिए होगी, जबकि NSG 4 कैटेगरी के स्टेशनों के लिए इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 20 मई 2027 तक के लिए लागू किया जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट ncr.indianrailway.gov.in से आवेदन संबंधी जानकारी ली जा सकती है। और श्रोताओं, इसी के साथ नमस्ते रोहतास का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। कल एक नए अंक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी हम सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए आपको लेकर चलते हैं समाचार प्रभात के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात।
1: कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई

0: क्षेत्र ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।

0: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
3: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमूज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार

0: से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
2: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM एंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है देशभक्ति गीत।

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में समीर के बोल और अनु मलिक का संगीत। श्रोताओं भाई, सुनते हैं अगला कार्यक्रम फरमाइशी पत्रों पर आधारित पसंद आपकी। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आपने बहुत ही प्यारे प्यारे पत्र इस कार्यक्रम में भेजा है और उसमें आपने लिखी हैं प्यारी प्यारी फरमाइशें। तो पहला पत्र हम लेते हैं और पहला पत्र भेजा है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के श्रोताओं ने। आप हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, अनिस्का और तन्मय गजबिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म उमराव जान फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। कुछ और पत्र ले लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि अपनी पसंद से कोई भी गीत सुनवा दे। और आप सभी श्रोता हैं ब्रह्मपुरा मनीगाछी से अच्छी लाल राय पान।

देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार, तो आप सभी को हम सुनवा रहे हैं उमराव जान फिल्म का ही गीत। और एक और पत्र है सरगुजा मैन पार्ट से, सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा अदीबा, बिहारी कॉलोनी से हैं परवीन सरफुद्दीन। इन लोगों ने अपनी कोई पसंद की फरमाइशें नहीं भेजी है, तो इनको भी हम सुनवा रहे हैं उमराव जान फिल्म का ही गीत। आइए सुने।

उमराव जान फिल्म का ये खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। और श्रोताओं भाई सुनते हैं अगला गीत आप सबों की पसंद पर, इम्तहान फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहते हैं रेगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो आप दोनों को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। कुछ और पत्र ले लेते हैं। ये पत्र आया है थाना मोड़ गढ़नों का रोहता से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन्निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमानिशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और सहबाज का। इनको भी हम सुनवा रहे हैं इम्तहान फिल्म का ही गीत। और एक और पत्र है, ये श्रोता है ताजपुर मोरबा से, भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जैन कुमार वैरागी। इन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है तो चलिए आप सभी सुनिए इम्तहान फिल्म का ये खूबसूरत गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
4: फसी
5: अनजान लिंक्स पर।

0: क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ब्रेक के बाद श्रोताओं फिर से स्वागत है पसंद आपकी कार्यक्रम में, और अब आइए सुनते हैं अगला गीत महबूब की मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से। कुछ और पत्र ले लेते हैं। ये श्रोता है नरहन स्टेट से नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता, अनुपम, आराध्या और विनीता मिश्रा, और साथ में स्नेहलता जैन। इन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहे तो इनको भी हम सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का ही नगमा, और आइए सुनते हैं।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत। अब श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत, आप आए बहार आए। इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में इस गीत को सुनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ बाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग को भी हम सुनवा रहे हैं।

0: और श्रोताओं, इस खूबसूरत गीत के साथ ही पसंद आपकी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, भाई आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: सजावट है न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
2: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
1: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बाढ़ से बचने के उपाय, आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे शामिल। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की आज हो सकती है घोषणा। प्रदेश के 5 कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान पटना, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, सारण और वैशाली जिले में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए टीम इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2000

0: 25 से 20 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
0: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान में एनडीए गठबंधन 22 से अधिक राज्यों में सत्ता में है जो देश के लगभग 75% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज किए जाने की संभावना है। इन चुनावों के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। किसी भी उम्मीदवार के नाम वापस नहीं लिए जाने की स्थिति में विजय उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। 10 सीटों पर 10 उम्मीदवार होने के कारण सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। भाजपा ने इस चुनाव के लिए पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन की ओर से 1 सीट पर राजद के सुनील सिंह उम्मीदवार हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग आज से 17 जून तक राज्य के सभी अंचलों में लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इस दौरान 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि पिछले वर्ष 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलाए गए महाअभियान के दौरान आवेदन लिए गए थे, हालांकि तकनीकी कारणों से इन आवेदन का निपटारा नहीं किया जा सका था। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। पटना उच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार इनमें 3 स्थायी और 4 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं। पटना उच्च न्यायालय की ओर से कॉलेजियम के तहत 11 अधिवक्ताओं के नाम भेजे गए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 7 नामों की अनुशंसा की है। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। प्रदेश के 5 कलाकारों को अकादमी के विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। वरिष्ठ अभिनेता सुरेश कुमार हज्जू, नाट्य निदेशक शिव नारायण झा और लोक कलाकार महेंद्र राम को राष्ट्रीय कला पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसके साथ ही युवा रंगकर्मी रोहित चंद्रा और लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव को युवा पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मोबाइल हूटर के माध्यम से अगले 3 घंटों में पटना, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, सारण और वैशाली जिले में तेज आंधी के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि इन स्थानों पर आज सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के शेष स्थानों पर भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के टेढ़ा गांच में सबसे अधिक 57.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नेपाल ने भारत से आम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि नेपाल ने हाल ही में गर्म पानी से उपचार की आवश्यकता सहित कुछ आयात शर्तों में संशोधन किया है, भारत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन में निर्यात को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। इस बीच नेपाल सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि भारतीय आमों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। श्री पाल ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 8,000 स्थानों पर अतिक्रमण की पहचान की गई है जिन्हें जल्द ही हटा लिया जाएगा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित फर्जीवाड़ा और जालसाजी मामले में मुंगेर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 15 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना और मुंगेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये गिरफ्तारियां की गईं। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पटना में दर्ज 2 मामलों में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए यह कार्रवाई की गई है। रोहतास जिला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सासाराम स्थित हजरत बिजली शहीद की दरगाह पर चादरपोशी की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर एस जमशेद अहमद ने किया। किशनगंज मंडल कारा में सजायाफ्ता एक महिला कैदी उषा रानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले में वो फरवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थी। जेल अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि महिला बंदी पिछले कुछ समय से मानसिक अवसाद से पीड़ित थी। अररिया जिले में भारत नेपाल सीमा पर दोनों देशों के बीच सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने और आपसी सहयोग को लेकर एसएसबी और नेपाल सुरक्षा बलों के बीच सामंजस्य बैठक आयोजित की गई। बॉर्डर एरिया मीटिंग में सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने पर सहमति बनी है। पटना जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इधर पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन और मोबाइल चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। इससे पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थीं। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, मध्यम वर्ग के लिए हर क्षेत्र में नए मौके। दैनिक जागरण ने राज्य में हुए टेंडर घोटाला मामले पर शीर्षक दिया है, ऋषु श्री के करीबी 3 अफसर गिरफ्तार, संजीव हंस फरार। दैनिक भास्कर की खास खबर है, बिहार में विकास की रफ्तार सुस्त पड़ी, सरकार ने पुल सड़क पर खर्च 38% तक घटाया, चुनावी साल में सब्सिडी पर 64% अधिक

0: लुटाया। प्रभात खबर ने फीफा विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, फुटबॉल का महाकुंभ, एक बॉल पर नाचेगी दुनिया। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार सरकार की बैंकों को चेतावनी, सुधार न करने वाले बैंकों के सरकारी डिपॉजिट पर लगेगी रोक। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य के 94,29,000 पेंशनधारियों के खाते में पहुंचे 1,096 करोड़ रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे शामिल। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की आज हो सकती है घोषणा। प्रदेश के 5 कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के दौरान पटना, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, सारण और वैशाली जिले में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
2: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
1: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
2: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
1: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार, स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

एफ एम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे देते हैं।

अब से थोड़ी देर बाद सुबह 9:10 पर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा गीत मालिका। आज के फनकार कार्यक्रम के लिए हम चलेंगे विविध भारती के स्टूडियो सुबह 9:30 पर।

सुबह 10 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा और सुबह 10:05 पर साहित्यिक कार्यक्रम में सुनिएगा। हिंदी वार्ता का कार्यक्रम होगा, विषय में वृक्षों का हमारे जीवन में महत्व। वार्ताकार होंगे भूपेंद्र नारायण सिंह। काव्य पाठ भी सुनिएगा, कविता वार्ताकार दिनेश गर्ग से। प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। सुबह 10:30 पर लोक माधुरी में भोजपुरी एल्बम लोकगीत का आप आनंद लेंगे। सुबह 10:45 पर आप सुनिएगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसधार। दिन में 11 आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत। और सुबह 11:20 पर हम रंग तरंग कार्यक्रम के लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनेंगे विविध भारती से ये कार्यक्रम।

दिन में 1 बजे आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत। और शाम 4:35 पर आप लोक माधुरी में भोजपुरी एल्बम लोकगीत सुनेंगे। और शाम 5:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे वंदन। शाम 5:30 पर हमारे युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। और शाम 6 बजे आप सुनेगा भोजपुरी लोकगीत। शाम 6:05 पर पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण होगा। और शाम 6:10 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसमें आज की बातें में वार्ता सुनेगा विषय धान की खेती कैसे करें। वार्ताकार डॉक्टर के प्रसाद से नई उम्र की नई फसल में धान के नर्सरी समय पर लगाएं। और इस कार्यक्रम में आज के सूत्रधार होंगे ब्रजेश कुमार पाठक और मनोज कुमार सिंह। प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। शाम 6:40 पर सांझ गीत में भोजपुरी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। और शाम 7 बजे प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा आयुष्मान। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

शाम 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण होगा। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण होगा। रात्रि 9:00 लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे। रात्रि 9:15 पर महफिल में गजलों का आनंद लीजिएगा। और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10:00 हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम प्रसारित होगा रसरंग। और चितपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा रात्रि 10:30 पर। रात्रि 10:55 पर अगले दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आपको जानकारी दी जाएगी। रात्रि 11:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर। सभा का समापन हम करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अन्य प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, भाई सुनते हैं गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी नगमे।

लिखे बोल आरडी बर्मन का संगीत। आइए सुनते अब अगला खूबसूरत गीत चंबल की कसम फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। साहिर ने इस गीत को लिखा है और खयाम का संगीत है।

छोटी सी मुलाकात इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था, शंकर जयकिशन का संगीत था। और श्रोताओं, इसी के साथ हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आइए आपको लेकर चलते हैं आज के फनकार कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने, मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद इज ऑल्सो प्रिबिक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौर एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौर ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस, एक गौला टैंक पे एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी rather than gossip।

0: तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पे डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए, और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी, और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, ज़िद करने लगा, और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे, और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया।
1: क्या
0: हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रुकुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अब्बा जी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब, और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार, जो बहुत जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और किन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित श्यामता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से

मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला। उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
1: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौर को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: हमारा।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: Absolut.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। समावेशी मानव विकास ढांचे पर इस बैठक में चर्चा होगी जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि

पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक शक्तिशाली और महान नेता हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना करते हुए दक्षिण कश्मीर के लोगों की सुविधा के लिए अनंतनाग में इसका ठहराव देने का अनुरोध किया। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में और हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आंधी और गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इफ्यूमेंट के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, साहित्यिक कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है वृक्षों का हमारे जीवन में महत्व। वार्ताकार हैं भूपेंद्र नारायण सिंह।
1: पृथ्वी की उत्पत्ति काल के बाद सर्वप्रथम यहाँ पेड़ पौधे ही जीव के रूप में विकसित हुए। वृक्षों के जन्म के हजारों वर्ष बाद अन्य जीव जंतु धरती पर आए, ऐसा शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया है। वृक्षों के बिना धरा पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि यह कहा जाए कि वृक्ष हैं तभी जीवन है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वृक्षों से उत्सर्जित प्राणवायु ऑक्सीजन के सहारे ही धरती पर जीवन कायम है। मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक कदम पर वृक्षों का अति महत्वपूर्ण योगदान है। वृक्ष हमारे सबसे लाभदायक मित्र हैं। वृक्षों के महत्व को समझकर ही अपने देश में आदिकाल से ही इनकी पूजा की जाती है। वृक्षों में ईश्वर का वास है, ऐसी भावनाएं यहाँ के लोगों के बीच व्याप्त हैं। वृक्षों से हमें शुद्ध वायु तो प्राप्त होता ही है, अनेकों प्रकार के फल फूल वस्त्र इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। वृक्षों के प्रभाव से वर्षा का पृथ्वी पर आगमन होता है। जहाँ वृक्षों की संख्या पर्याप्त होती है वहाँ भूजल स्तर भी सामान्य होता है। मिट्टी के कटाव को रोकने में वृक्षों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वृक्षों की हरियाली में ही मानव की खुशहाली छिपी होती है। जिस भूभाग पर वृक्षों की संख्या अधिक होती है उस क्षेत्र के लोग स्वस्थ एवं खुशहाल होते हैं। पेड़ पौधे स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रस्तुत करते हैं।

मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र एवं आवास हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने आसपास जहां भी अनुकूल स्थान हो वहां वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, अर्थात वृक्ष अपने परिवार के सदस्यों से भी हमारे लिए अधिक फलदायी होते हैं। वनाच्छादित क्षेत्रों में वर्षानुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, साथ ही उस क्षेत्र में भू जलस्तर भी ऊपर होता है। वृक्ष केवल जंगलों की ही नहीं बल्कि प्रत्येक वैसे क्षेत्रों की भी ज़रूरत है जहां मानव निवास करते हैं। सड़कों के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य सैकड़ों वर्षों पूर्व से होते आ रहा है। इस कार्य से मनुष्यों को कितना आराम होता है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। धूप एवं वर्षा से बचकर राहगीर ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी आनंदित हो जाते हैं। विकास की अंधी दौड़ में आज मनुष्य अपने सबसे महत्वपूर्ण साथी पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज के 5 दशक पूर्व जहां केवल ईंधन एवं आवासीय ज़रूरतों के लिए वृक्षों की कटाई होती थी, वहीं हाल के दशकों में विकास के नाम पर वृक्षों का दोहन अनवरत जारी है। पेड़ों की कटाई से संपूर्ण विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी खतरनाक समस्या से जूझ रहा है। वृक्षों की कमी का असर मानसून को ही प्रभावित कर रहा है, जिसके फलस्वरूप अतिवृष्टि व अनावृष्टि के क्षेत्र में इलाके बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वृक्ष लगाने एवं वृक्ष बचाने के नाम पर कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, फिर भी ज़मीनी सच्चाई इससे अलग है। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद वृक्षों की संख्या कागज़ों में ही सिमट कर रह जाती है और ज़मीन वीरान ही रह जाती है। दूसरी तरफ वृक्षों की कटाई बेरोक टोक जारी है। जिस रफ्तार से वृक्षों की कटाई हो रही है वृक्षारोपण की रफ्तार काफ़ी धीमी है। ऐसा होने से पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। बाढ़ और सुखाड़ इसी असंतुलन की बानगी है। भू जलस्तर का लगातार खिसकना और जानलेवा गर्मी एवं आंधी तूफानों की श्रृंखला भी पर्यावरण असंतुलन के ही दुष्परिणाम हैं, जिससे मानव जीवन कराह रहा। लेकिन इस गंभीर वर्तमान एवं भयावह भविष्य के प्रति हम लोग लापरवाह हैं। प्रकृति के अनमोल उपहार के रूप में मानव को वृक्षों जैसा पालक प्राप्त हुआ है। वृक्षों से मानव की सर्वाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आदिकाल से ही वनौषधियों के प्रयोग से मानव जीवन लाभान्वित होता रहा है, लेकिन जीवन प्रदायी वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या बढ़ाने की ओर आम जनजीवन का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। वृक्षारोपण कार्यक्रम अब एक समारोह आयोजित करने का शगल बनकर रह गया है। कभी कभार कहीं विद्यालय के छात्रों द्वारा तो कहीं किसी राजनेता या अधिकारी द्वारा 2-4 पौधे लगाकर वृक्ष लगाओ अभियान की इतिश्री कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगलों से लेकर गांवों तक में वर्षों पूर्व से लहराते वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। वृक्षों की कटाई और नए वृक्षों को लगाने के बीच दिनानुदिन खाई बढ़ती चली जा रही है। इस असंतुलन से उत्पन्न स्थिति को लेकर हमारी लापरवाही इस समस्या को और भी गंभीर बना रही है। चूँकि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वृक्षों से प्राप्त सामग्रियों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, इसलिए हम यह मान बैठते हैं कि बगैर वृक्षों की कटाई के कार्य संपन्न नहीं हो सकता। चाहे गृह निर्माण के काम हो, उद्योग धंधों की स्थापना हो,

0: अथवा किसी भी प्रकार के विकास कार्य हों, लकड़ी की जरूरत होती है। आज चाहे एल्युमिनियम, लोहा, स्टील, फाइबर आदि से जितनी भी सामग्रियों के निर्माण हो रहे हैं, लेकिन लकड़ी के फर्नीचरों की कोई सानी नहीं है। अपनी ज़रूरतों को पूरी करने हेतु हम लोग लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। इसके लिए वृक्षों की कटाई होती है। इस कार्य में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो वृक्ष काफ़ी पुराने और काटने योग्य हों, उन्हें ही काटी जाए, और इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाए। हरे वृक्षों एवं बगैर अनुमति के वृक्षों की कटाई कानूनन जुर्म है, और इसके लिए अर्थदंड से लेकर जेल तक की सज़ा निर्धारित है। साथ ही हमें एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि जितनी संख्या में वृक्षों की कटाई हो, उससे कहीं अधिक नए वृक्षों को लगाने का भी कार्य हो, तभी हम पर्यावरण संतुलन को कायम रख सकते हैं। बरसात के इस मौसम को वृक्षों के पौध लगाने का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। इस समय लगाए गए पौधों को प्रकृति से पानी प्राप्त हो जाता है, जिससे उनकी जड़ें मिट्टी को आसानी से पकड़ लेती हैं और 70% पौधे जीवित बच जाते हैं। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। आसपास जितने अधिक वृक्ष होंगे, हम उतने ही स्वस्थ होंगे। इसलिए हरे वृक्षों की कटाई कभी नहीं करनी चाहिए। अगर वृक्षों की कटाई आवश्यक ही हुई तो एक वृक्ष को काटने से पूर्व 10 वृक्षों को आसपास में लगाने का संकल्प लेना चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वृक्ष लगाने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। इसके लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर अधिकारी नियुक्त हैं, साथ ही अनुदान की भी व्यवस्था है। हमें वृक्षों को बचाने एवं बढ़ाने के प्रति जागरूक होना होगा। साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को भी इस कार्य में मदद करके तथा उनसे सहयोग प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हरे भरे वृक्ष लहराएंगे, तभी मानव जीवन समृद्ध व खुशहाल होगा। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने जीवन में कम से कम 10 वृक्ष जरूर लगाएं। इसी में हम सबकी भलाई है।
1: सृष्टि के स्वर्णिम विहान से लेकर प्रलय की काली संध्या तक संगीत का अस्तित्व स्वीकार करना ही पड़ता है। मानव जीवन ग्रंथ के पृष्ठों को कहीं से भी पलट के देखा जाए तो कोई भी अध्याय ऐसा नहीं जिसे संगीत से शून्य कह दिया जाए। बोलचाल की भाषा में संगीत से केवल गायन समझा जाता था, किंतु भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत के महान संगीतज्ञ पंडित सारंग देव द्वारा रचित पुस्तक संगीत रत्नाकर में स्पष्ट लिखा गया है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन एवं नृत्य, इन तीनों का सम्मिलित रूप ही संगीत कहलाता है। संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर एवं लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कला की श्रेणी में 5 ललित कलाएं आती हैं: संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला। इन ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में नियमों का पालन अनिवार्य होता है। स्वर, लय, तालबद्ध होना, राग के अनुकूल स्वरों का प्रयोग करना, गाने बजाने में क्रम होना, आलाप तान, बोलतान, सरगम आदि के तैयारी और स्पष्ट उच्चारण करना आदि शास्त्रीय संगीत के मुख्य नियम हैं। इन्हें मानते हुए आनंद की सृष्टि करना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उद्देश्य है। सबसे मुख्य बात यह है कि शास्त्रीय संगीत की उचित प्रशंसा करने के लिए संगीत का थोड़ा बहुत ज्ञान परमावश्यक है। हम चाहें उसकी बारीकियों को न समझें, किंतु कम से कम इतना तो ज्ञान आवश्यक है कि आलाप तान होती है क्या, शास्त्रीय संगीत में इसका क्या महत्व है। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्राचीन काल में जाति, प्रबंध, रूपक आदि गाए जाते थे। इनके बाद ध्रुपद गायन का प्रचलन हुआ,

पर आज ख्याल गायन प्रचार में है। कुछ लोग इसे पक्का गाना अर्थात क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं। शास्त्रीय संगीत के सरलीकरण की दृष्टि से ठुमरी, टप्पा, दादरा, गजल, भजन आदि गायन शैलियों को वर्तमान में अर्धशास्त्रीय, उपशास्त्रीय या सेमी क्लासिकल म्यूजिक की संज्ञा दी जाती है। ये गायन शैली राग रागनियों में निबद्ध होते हुए भी कुछ अंशों में सरल संगीत का आनंद प्रदान करती है। भारतीय मानव जीवन में 16 संस्कार माने जाते हैं, यथा नामकरण, कर्णच्छेदन, मुंडन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, पाणिग्रहण संस्कार इत्यादि। इनमें से प्रत्येक का प्रारंभ एवं अंत संगीत से ही प्रारंभ होता है। ऐसा कोई त्यौहार नहीं है जहां संगीत न हो, बल्कि संगीत के बिना त्यौहार अधूरा रह जाता है। शास्त्रीय संगीत एवं मानव जीवन में अन्योन्याश्रय संबंध है। संगीतज्ञों द्वारा प्रत्येक त्यौहार या अवसर पर जो गीत की रचना की गई वह सभी राग समय चक्र एवं विशिष्ट राग के अंतर्गत हुई। यही कारण है कि उसका प्रभाव सर्वव्यापी होता है तथा कभी नष्ट नहीं होता है। गाँवों में गाए जाने वाले गीतों के विभिन्न प्रकार यथा कपड़े धोते समय के गीत, भीमकाय पाषाणों के ऊपर चढ़ते समय श्रमिकों का गाना, खेतों में पानी देते समय, फसल बोने के समय में या फसल काटने के क्रम में किसानों द्वारा गाए जाने वाले गीत, पशु चराते समय गीत, यह साबित करता है कि मानव जीवन और संगीत का घनिष्ठ संबंध है। पावस की लाजवंती संध्याओं को श्वेत श्याम मेघमालाओं से प्रस्फुटित नन्ही नन्ही बूंदों का रिमझिम राग सुनते ही कोयल कूक उठती है, पपीहे गा उठते हैं, मोर नाचने लगते हैं तथा मंजीरे बोल उठते हैं। लहलहाते हरे भरे खेतों को देखकर कृषक आनंद विभोर हो जाते हैं और अनायास ही आलाप का उच्चारण होने लगता है, मानो वह राग देश का या मल्हार अंग का बोल हो। जीवन पथ के किसी भी मोड़ पर रुक कर देखा जाए तो वहीं आपको संगीत की ध्वनि गुंजायमान मिलेगी। दुख से, सुख से, रुदन से, हास से, योग से, वियोग से, मृत्यु से, जीवन से, सारांश यह है कि जीवन के प्रत्येक अवस्था में

के छोड़ चले चौराहे बुझरहाय लाव, छोड़ चले चौराहे बुझरहाय लाव, रत्ती भर धूप देख ललच गया गाँव, ठिठुरे तन दौड़ पड़े पाने को ठाँव।

में पानी, निद्राहत रात कपी देह की किसानी, निद्राहत रात कपी देह की किसानी, ठहरे हैं टीले।

पारती भर धूप देख ललच गया गाँव, ठिठुरे तन दौड़ पड़े पाने को ठाँव।

मुझे छप्पर पर छाई है चिड़ियों की चाँव, छप्पर पर छाई है चिड़ियों की चाँव, रत्ती भर धूप देख ललच गया गाँव, रत्ती भर धूप देख चौखट से निकल गई कुतिया बेचारी, चौखट से निकल गई कुतिया बेचारी, खुट्टे की बछिया भी कूलाचा मारी, खुट्टे की बछिया भी कूलाचा मारी, कौओं के पंख फूले बोल गए काँव, कौओं के पंख खुले बोल गए काँव।

को ठाव। दूसरी कविता है मेहनत का फल। इसी गांव की भूतही धरती, इसी गांव की भूतही धरती, कूस का सदियों से परती, विधवा के बिखरे बालोसी, बुढ़े हाथी की खालोसी, जहां ससक की जोड़ी चरती, इसी गांव की भूतही धरती। रोज रात भर कहर कहर कर, यहां निकलते शब्द ठहर कर, पढ़ते थे जो जंतर मंतर, कहते थे यह बांझिन बंजर, पहले हलवा है को हरती, इसी गांव की भूतही धरती। यहां रात दिन अजगर पलते, बिषधर के दो दांत निकलते, यहीं टिटिभ उड़ते चिल्लाते, दौड़ दौड़ कर पंख हिलाते, हवा रोज दुर्गंधी भरती, इसी गांव की भूतही धरती। इसी भूमि पर श्रम का डेरा, लाया है एक नया सवेरा, फूलों की क्यारी मुस्काती, रोज घूमने बस्ती आती, हवा खेलने यहीं उतरती, इसी गांव की भूतही धरती। इसी गोद में पके आम हैं, इसी गोद में पके आम हैं, अमरूदों के बड़े नाम हैं, यहीं चहकते रैन बसेरा, यहीं कोकिला का है डेरा, यहीं गिलहरी कुछ कुछ करती, इसी गांव की भूतही धरती। धरती मेहनत को अपनाती, फूलों में खुशबू बन जाती, अपने तन का दूध पिलाती, इसीलिए माता कहलाती, दाने दाने में अवतरती, इसी गांव की भूतही धरती। तीसरी कविता है शिक्षा का दीप। मुनिया रानी पानी लाती, खेतों पर खाना पहुंचाती, गाय बैल को खिला पिलाकर गोबर काढ़ किनारे रखती, आंगन वाली धूप देखकर ठीक समय पर पढ़ने जाती, बाबूजी हलवाही करते, माँ करती है खेत रुपाई, दोनों मिलकर रोज बरसते, कर दे मुनिया बंद पढ़ाई, मुनिया मन ही मन मुस्काती, रात रात भर दीप जलाती, रोज का कहरा गिनती लिखती, हिंदी वाली पोथी पढ़ती, धीरे धीरे चली पढ़ाई, अंग्रेजी भी लिखने आई, मुनिया माँ को लगी बताने, वर्णाक्षर का भेद पढ़ाने, तख्ती पर कुछ शब्द लिखकर मिठी बोली में समझाने, माँ को भी जब बोध हो गया, कुछ दिन में अज्ञान खो गया, ऐसे ही दीपक जलता है, एक एक से जग पलता है, हम सब मिलकर करें प्रकाश, उज्ज्वल हो धरती आकाश। और एक कविता है पोखर का गांव। बचपन की यादों में सिमटा वह पोखर का गांव,

अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम में काव्य पाठ, कवि थे दिनेश गार्गे, और इसी के साथ साहित्यिक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:30 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी।

मदन राय की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये निर्गुण गीत। गणेश दत्त किरण का लिखा गीत था, भरत शर्मा ब्यास का संगीत था। अब आइए सुनते हैं अगला गीत मुन्ना सिंह की आवाज़ में, दीप मोहम्मद आबादी का लिखा हुआ, दुर्गा प्रसाद का संगीत, निमिया के दाढ़ मैया एल्बम से।

श्रोताओं, इसी के साथ भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है। अब आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का रसधार।

रंजन दुबे की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, अनुज तिवारी का लिखा, असलम मिर्जापुर का संगीत निर्देशन, सब मतलब के मीत। अब आइए सुनते हैं समैया, ये गीत अवधेश पाठक की आवाज़ में पीके भास्कर का लिखा गीत है, असलम मिर्जापुर का संगीत है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

बद्री बहार की आवाज़ में अभी आप ये सुन रहे थे गीत अशोक शिवपुरी का लिखा हुआ और संगीत भी अशोक शिवपुरी का था। रंजन दुबे की आवाज़ में आप सुन रहे थे सब मतलब के मीत, अनुज तिवारी के बोल, असलम मिर्जापुर का संगीत और समैया आप सुन रहे थे अवधेश पाठक की आवाज़ में, पीके भास्कर का लिखा गीत, असलम मिर्जापुर का संगीत। और श्रोताओं इसी के साथ रसधार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, दिन के 11 बज चुके हैं और अब आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी, लेकिन सुनते हैं पहले ये संदेश।

एमसीसी गांव का विकास कर रही है। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: राजा पियाजानी एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे। भरत शर्मा ब्यास की आवाज़ में मोतीलाल मंजुल का लिखा गीत था और भरत शर्मा ब्यास की आवाज़ में ये भरत शर्मा ब्यास का ही ये संगीत था। अगला गीत आइए सुनते हैं, सुन के घरवा जब से, सुना कह के घरवा जब से, राजा पियाजानी एल्बम से ही, भरत शर्मा ब्यास की ही आवाज़ है, भरत शर्मा ब्यास का लिखा गीत और संगीत दोनों ही हैं।
1: विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: महिलाओं के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अब आइए सुनते हैं परदेसिया बलमुआ एल्बम से ये गीत शारदा सिन्हा की आवाज में।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: और श्रोता, इसी के साथ लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।

0: कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: ये पॉप गीत आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में, समीर के बोल थे।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

0: शारदा सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला राम लक्ष्मण ने।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: तर्ज आवाज और गीत रचना है सुखविंदर सिंह की, नशा ही नशा है इस एल्बम का गीत आप सुन रहे हैं।
1: मोहब्बत

तलाश फिल्म का ये गीत था अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में समीर के बोल संजीव दर्शन का संगीत था और यही है श्रोताओं आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क

0: माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशमदीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

राम और श्याम फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। जब याद किसी की आती है इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज है, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं।

0: मदन मोहन का सर्वद किया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी जब याद किसी की आती है, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे। सखी सहेली।

0: शंकर जय किशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी का लिखा ये नगमा आपने सुना फिल्म शिकार से।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया राजा और रंग फिल्म से। आनंद बख्शी की रचना है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: मैं तुलसी तेरे आंगन की, इस फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर आशा भोसले का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को शुरू में ढाला लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल ने।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

ज्यादा फिल्म का दो गाना आपने सुना किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज से और इस गीत की रचना की आनंद बख्शी ने। आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें, साहिल लुधियानवी की बोल।

0: आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे थे इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं।

दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

प्रदीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से। और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भोर भय पनघट पर, अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थीं। अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी अब वो पक्की सड़क बन गई है। मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, डाकिये की साइकिल की घंटी मूक हो गई है, डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज और ईमेल ने ले लिया है। गाँव के हरे भरे जंगल जैसे माहौल को शहर के कॉन्क्रीट के जंगलों ने उजाड़ दिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, इस गीत को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में विविध भारती के गानों की बौछार हो रही है, ये कहीं न कहीं हमारे मन को सुकून और दिल को ठंडक पहुंचा रही है। सचमुच ही विविध भारती का ये सुरीला सफर हम श्रोताओं को एक साथ जोड़ता है और जो कि इस कार्यक्रम को रंगारंग दिलचस्प बनाता है। और इन्होंने विविध भारती का शुक्रिया किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और श्रोताओं कार्यक्रम तो आपके शामिल होने से ही बनता है। एक श्रोता और लिखती है कि गांव की अनमोल यादें ताजा हो रही हैं, इस इबारत में गांव का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का किनारा, नैया की सफर, सौंधी मिट्टी की खुशबू, शुद्ध हवा की शीतल लहरें, अनुपम सौंदर्य, सूर्यास्त, गांव का मेला, खेल खिलौने, मौज मस्ती, गांव में गुजरे बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगी हैं। उसी की तस्वीर लेकर आ रहा है ये सुरीला सफर और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्द हो सकते हैं रात दस तक यादें, भोर पनघट, सौंधी रोटी, खिलौने, रेत की नाव, जी हाँ, और गीत भी बताएं। नाव की अगर कोई सैर आपको याद हो तो

नया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें श्रोताओ। गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है, यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं, बगीचे से आम चुरा कर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है, आपके गांव की, रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं श्रोताओ। क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफर किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीतमय होगा, हमने इबारत पढ़ ली है, हम गांव और शहरों में तुलना करें तो हमें गांव ही अच्छा लगेगा, गांव में अपनापन होता है, वही शहरों में भीड़ तो बहुत है पर अपना कहने वाला कोई नहीं। और एक बात, इन दिनों शहरों में शाम के वक्त कुल्फी चाट के ठेलों और अन्य दुकानों में सुंदर लाइट से सजी दुकानें शाम होते ही जगमगा उठती हैं, और वहीं गांव में शांत सुकून के साथ अपने घर के छत पर शाम को लेटे हुए चांद तारों को तकना किसी अद्भुत दुनिया की ओर हमें ले जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मर्म को छू लेने वाली है हमारी आज की इबारत, हमारी पीढ़ी वालों को झकझोर देती है, बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं तालाब।

की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सोंधी खुशबू वाली सफर का इंतजार है। तो जी हाँ, ये सफर जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गाँव को लेकर, गाँव की यादों को लेकर, और गाँव आपको क्यों याद आते हैं ये जरूर बताइए।

ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का, और आप कलाकार बता दें। एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफर सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताजा हो गईं और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियां, वो आंगन में सब कुछ समेटना और रोजगार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोजगार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोजगार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भये पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं, तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली

शक्लें पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीजें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है?

बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से सजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही ना हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे, गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का गांव की जिंदगी क्या होती है वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे, बहुत मजा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीजें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गाँव के चारों तरफ पहाड़ है जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गाँव का नाम ठोकर है। मेरे गाँव की लोकेशन बहुत अच्छी है, गांव उत्तर दिशा के

पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफर है, अक्सर लोग गाँव छोड़कर शहर में रहने हैं लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए, आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन, हमारे गाँव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था, बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं, आपने रुला दिया वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही हैं, ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि यह हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते।

इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था। उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूँ। उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने 8 गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर भय पनघट पे। जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए। हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं।

ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है, ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है, बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है, जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीजें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन के जो चटपटी चीजें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे, वो कागज की पुड़िया के समान बांध के देना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था, आवाज सुनते ही सभी साथी दौड़ कर वहां पहुंचकर गाना सुना करते थे।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी कल

ये गीत आप सुन रहे थे, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोताओं, पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पनघट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे, यादें अजीब चीज होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसी उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को, बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना, यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं, और कलाकार

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना, सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक, और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांदूद, जो नर्मदा नदी पर बसा है, वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया। मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ की मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक।

एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

अरुण गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव जरूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीज़ों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफर सम्पन्न होता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा किए जाने की संभावना है। इन चुनावों के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। किसी भी उम्मीदवार के नाम वापस नहीं लिए जाने की स्थिति में विजयी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। 10 सीटों पर 10 उम्मीदवार होने के कारण सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। भाजपा ने इस चुनाव के लिए पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन की ओर से 1 सीट पर राजद के सुनील कुमार सिंह एकमात्र उम्मीदवार हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के निपटारे के लिए आज से सभी अंचलों में विशेष अभियान की शुरुआत की है। 17 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में प्री मॉनसून बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना, बक्सर, सिवान, सारण, बेगूसराय, सुपौल और मधेपुरा समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। पश्चिम चंपारण और कटिहार जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन के लिए तीसरी चयन सूची जारी कर दी है। पहली और दूसरी सूची के बाद बची सीटों के आधार पर तैयार इस सूची में शामिल छात्र 14 जून तक संबंधित विद्यालयों में नामांकन ले सकेंगे। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल मनीष कुमार के दो ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके हाजीपुर के बागमली स्थित आवास और नगर परिषद कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए मूल्य के आभूषण, आलिशान घर, संपत्ति के कागजात और वाहन बरामद किए गए। बक्सर जिले के डुमरांव और राजपुर प्रखंड में विशेष धावा दल ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर चार बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला से फेसबुक पर हथियार संग फोटो वायरल करने के मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक देशी पिस्तौल भी बरामद

किया गया। रोहतास जिले के डेहरी स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में दौड़ के दौरान 5 प्रशिक्षु जवान भीषण गर्मी के चलते बेहोश हो गए। इनमें से एक प्रशिक्षु सिपाही श्रीराम कुमार की पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा हो या ओ लेवल सी लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत
1: आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
2: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को

0: क्या है, तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, मतलब जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी

0: बड़ी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ।

0: इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, एम जी हर्षमत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पालकी का ये गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: शारदा की आवाज में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है, और श्रोताओ यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार, और आप सुनिए ये नगमा।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी,
1: सब लेकर आए हैं।
2: तो आज
1: देखिए खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किन का है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
2: जी बिल्कुल।
1: या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं।
2: आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाते हैं?
1: इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
2: भीमव्वा डोड्डा बलप्पा शिलेक्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
2: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
1: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं।
2: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
1: जी,
2: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के उसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
1: जी?
2: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
1: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे।
2: जी हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डा बलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहां की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेयता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है, कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानी को अच्छे से समझाया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना,
0: हाँ
1: उस तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं, और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांव तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है।
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती, और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने

0: गांवों और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
1: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज़ उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सकें, ताकि जो तोगलू गुम्बे याता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सकें।
0: बिल्कुल। और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है।
1: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं, इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है, और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है उनसे जुड़े हुए होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
0: बिल्कुल। उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गुम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गुम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले कैथारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
1: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या-क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
0: जी
1: और एक
0: बिल्कुल,
1: गीत सुन लें अभी।
0: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और
1: बिल्कुल
0: खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि
1: हाँ
0: किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो
1: हाँ
0: डांस है वो देखने में बड़ा मजा आता
1: बिल्कुल। और ये
0: था।
1: अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं ना।
0: हाँ
1: तो हमारे एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला वो बोल रही
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है, तो बच्चों को जरूर वहां लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है।
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं, और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने के, खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं ना, तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित
1: बिल्कुल। वो
0: करना
1: जिस
0: बहुत
1: तरीके के
0: जरूरी
1: खेल में
0: है।
1: उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए।
0: जी
1: और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सकें। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं, और यही वो समय होता है आरती जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से
0: जी।
1: उनका विकास होगा।
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी जरूरी नहीं है, जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी
1: बिल्कुल
0: खेले होंगे,
1: दौड़ भाग है,
0: भाग दौड़
1: साइकिल
0: के।
1: चलाना है, बहुत
0: हाँ,
1: सारी चीजें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: लुका छिपी भी
1: लुका
0: खेलते
1: छिपी
0: थे,
1: खेलते थे।
0: और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा किए, सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली, उससे मारकर खेल रहे हैं उन
1: बिल्कुल बहुत
0: पत्थरों
1: से
0: के
1: ऐसे
0: टुकड़ों
1: खेल
0: को।
1: हैं जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और
0: जी
1: जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दीन दुनिया की खबर नहीं रहती है।
0: जी
1: तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर। तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकल कर खेलना।
0: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया।

ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे।

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में
1: और
0: बड़ी
1: मजा आता
0: रुचि रहती है। तो
1: है।
0: देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही हैं कि खेल हर चीज में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने
0: बिल्कुल
1: कि
0: सही
1: हम
0: बात
1: भी
0: है।
1: अपने
0: और
1: बचपन
0: इस
1: में पहुंच
0: साल
1: जाते हैं।
0: जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है

0: कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं, और खेल
1: बिल्कुल
0: खेल में बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई समझाई भी जा सकती है ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं,
0: जी
1: बहुत सी ऐसी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं, ताकि अब उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीजें बच्चों में विकसित करते हैं खेल, और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं।
1: बिल्कुल
0: और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है,
1: सुरक्षित
0: हर
1: नहीं।
0: बार बच्चे के साथ कोई जाएगी जरूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले, तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो
1: बिल्कुल
0: बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे, माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों
1: बिल्कुल
0: का ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलके खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनके से उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत
0: अभी
1: कुछ
0: जैसे बारिश
1: सीख
0: का जब
1: सकते हैं।
0: मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला
1: हाँ
0: कैसे जाता है, उनके साथ बैठकर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया, तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना
1: बिल्कुल
0: विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जी लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है, बस
1: बिल्कुल
0: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
1: बिल्कुल। और
0: हैं।
1: हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए, और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना, उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जब
1: बहुत
0: बच्चों को
1: जरूरी है।
0: धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है।
1: बिल्कुल। और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता
0: जी
1: है कभी कभी।
0: भाई, बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो चलो एक गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं, बिल्कुल
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं, बिल्कुल
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं
1: तो
0: तो
1: बिल्कुल
0: खुशी दिखाई देगी,
1: खुश
0: अगर
1: दिखेंगे।
0: वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहां बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो
1: उसको
0: सच्चाई
1: देख
0: है
1: के, उसको खुश देख के
0: उसके
1: ना,
0: बारे
1: हम
0: में हम
1: लोग भी
0: समझ ही
1: थोड़ा
0: नहीं
1: सा
0: पाते
1: अवसाद में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे। कहते हैं ना कि हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद क्या है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है।
0: हाँ,
1: तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव। तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं, वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
0: बिल्कुल। इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं
1: हाँ,
0: तो वहां हमें बहुत सारे एक लाइक मिले।
1: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने कितने
0: हाँ,
1: लाइक्स हो गए,
0: वो
1: कितने
0: लाइक कितने
1: कमेंट्स हो
0: बढ़ गए।
1: गए वो
0: हाँ
1: उसी देख में लगे रहते हैं।
0: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है। बल्कि हमें यह समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है, कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना, कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम अभी क्यों नहीं खुश हो जाते। तो
0: बिल्कुल,
1: हर जो जो जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
0: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे
1: बिल्कुल,
0: मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, इसके इसके ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन
1: बिल्कुल
0: वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप
1: बिल्कुल। और
0: बता
1: ये
0: रही हैं।
1: जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि
0: जी
1: हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तखिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये
1: बिल्कुल
0: इतना प्यारा संदेश है और हम

0: श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की,
0: क्या बात
1: क्योंकि
0: है।
1: मन से किए गए काम खुश करते हैं।
0: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा
1: एक
0: ये
1: प्यारा सा
0: प्यारा
1: गीत।
0: सा गाना।

0: बहुत मीठा, बहुत सुरीला गीत हमने सुना। और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का
1: दिखावा
0: दिखावा करना।
1: करना
0: जी
1: बिल्कुल। और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें। क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज़ है, हम खुश हैं इसमें, वो चीज़ होनी चाहिए।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगी।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, अब हम मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं, वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं। और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो, और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत
1: बिल्कुल,
0: सही बात लिखी है।
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की।
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है, और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है, और यही सच्ची खुशी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है, तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहां वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है। ये
1: बिल्कुल।
0: भी
1: और
0: सही बात है।
1: बिल्कुल, एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है, क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर से होता है। लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है, ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने।
0: और भी संदेश हैं।
1: तो एक और जमाइश होता है जो कहते हैं कि भाई, दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अपितु उसके पोषक भी है। फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं, क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है, और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
0: ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं, और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में। एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने। और इसी के साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूँ, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूँ तो आप सभी शक्की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और
1: जी
0: जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी
0: और
1: है।
0: इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है, और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हम ना
0: हाँ
1: कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ ली हो रही तो बस माचिस की तीली लेके

0: करने लगे तो वो बहुत खतरनाक
1: और
0: चीज
1: महिलाएं
0: होती है।
1: हेयर पिन घुमाती हैं
0: हाँ, हेयर
1: जिस
0: पिन, चाबी लेता, कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुँचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना, बहुत समय तक ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना,
1: जी
0: जो हमारे कानों की होती है वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर में शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
1: देखो, जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है, तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी, नुकीली चीजें,
0: बल्कि हम
1: हेयर
0: कहेंगे
1: पिन,
0: कि आप
1: इनका तो
0: को
1: कभी
0: बिल्कुल
1: ना
0: आप
1: करें।
0: इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीज़ आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पुराने जो होते हैं वो बर्ड्स, उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुँचाता है, इसलिए ये सब चीज़ें आप ना प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए,
1: जी
0: और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है, कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे
1: जी
0: एक आवाज सी आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे, तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही।
1: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से, मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है, तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है, तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो
0: बिल्कुल
1: ईयरफोन का इस्तेमाल कम से
0: बिल्कुल।
1: कम करना
0: और
1: है।
0: सबसे बड़ी चीज़ है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत ज़रूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50, उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज़्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज़ को, कि आपको बाकी आवाज़ें ना आए। और दूसरी चीज़, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर बाद आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना, कान आपका ऐसे पर्दे पर उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास चाहिए, कृपया करके अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज़ आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीज़ें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, उस चीज़ से उसकी जाँच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जाँच होती है वो भी जरूर करवाइए।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें, और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: मुझसे तो प्यार।
1: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
2: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।

0: हेलो फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं है आज के दिन। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: ये अपना
1: हिलाल अहमद।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम, मैं शाल काम करते हैं। हाँ,
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की? लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेटों में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो वो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना?
1: जी। इसका मुख्तलिफ साइज है। फिल्म
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं।
1: है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिवीजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो

0: नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात तो मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में, फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम लोग तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे, बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं,
0: तो अच्छा
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: हमारे तो टारगेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: महीने तो ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर, तो ज्यादातर करता नहीं था हम लोग उस टाइम में। हाँ ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो गोल मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या
1: खेलने की बहुत चाहत थी, जिम्मेदारी हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर के आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए, और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: वादा

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है,
1: जी जी
0: पसीना आता है, परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी
0: बताइए अरुण साहब, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है। आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं। आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने, ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल?
1: नहीं ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते हैं ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, छाटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी देखें, बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का, आपके गीत

0: मैं ग्राम बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगी लाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
1: मांगी लाल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
1: हम भी अच्छे हैं और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं
0: जी। काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
1: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
0: जी जी,
1: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है तो?
0: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
1: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
0: जी जी भेजे हैं।
1: ठीक है,
0: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
1: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी, और क्या करते हैं आप?
0: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं हम किसान हूँ।
1: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
0: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
1: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
0: जी जी मैम।
1: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
0: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
1: अरे बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
0: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
1: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
0: जी
1: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
0: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
1: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
0: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
1: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
0: आज मुझे खुदा गावा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूं पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी ये चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल ही बनाते थे कि हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है, कि क्या वो खेला करते थे? हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है,
0: तो
1: बचपन होता ही है बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम क्या बोलते, सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने छोड़ दिया, यानी 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था, पहले से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे
1: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
0: क्या
1: आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस फ्रेंड में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गया आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, जो झुक गया आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:30 पर।

शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम और 6:05 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय होगा शाम 6:10 पर, और शाम 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत।

हमारा प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे और 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

7:25 पर आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसके ठीक बाद जिले की हलचल और 7:50 पर आप सुनेंगे आपके ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या और रात्रि 9:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। गजलों की महफिल आज सजेगी रात्रि 9:15 पर और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार।

0: रात्रि 10 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग, और 10:30 पर रात्रि आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। तो श्रोताओं, ये था आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शारदा सिन्हा की आवाज़ में परदेसिया बलमुआ के एल्बम के इस गीत से। ये गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा, जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत

बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गाँव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: शारदा सिन्हा के गाए इसी गीत के साथ ही लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हिंदी में समाचार के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में भाग लिया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर

0: लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। खाड़ी क्षेत्र के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री महाजन ने बताया कि 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे जहाज MT मारिवेक्स को 8 जून को ओमान के तट पर निशाना बनाया गया था। चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर बल दिया।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन को भेजा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। PV सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की ही ईशा रानी बरुआ और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल और रतेंद्र भादुरी की आवाज़ में। एल्बम का नाम है स्वामी एकदंता। वीरेश दत्त के बोल हैं, संजय राज गौरीनंदन का संगीत है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मयंक उपाध्याय के गाए इसी गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण अब से बस कुछ ही पलों में।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज के इस कार्यक्रम में क्या क्या हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो किसी दीमक की तरह हमारे समाज को खोखला कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर की, जो एक हमारे सभ्य समाज के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। कार्यक्रम में आगे इस विषय पर हमारी और आपसे चर्चा होगी। दोस्तों, ये अच्छी पढ़ाई से हमारा बेहतर भविष्य बनता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर खेल कूद का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि पढ़ाई। इस विषय पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के बीच बीच में फिल्म

गीतों से मनोरंजन हम आपका करते रहेंगे, और चलते चलते एक नज़र डालेंगे खेल के मैदान से। तो चलिए हम और आप मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत से।

कंधे पर बस्ता होना चाहिए। उस उम्र में वे होटलों में जूठे बर्तन धो रहे हैं, ईंट भट्ठों पर काम कर रहे हैं या फिर कारखानों में खतरनाक मशीनें चला रहे हैं। क्या यह हमारे समाज की सबसे बड़ी हार नहीं है? बिल्कुल हार है। बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है, जिसमें कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन लाचारी और गरीबी की वजह से इन मासूमों को बचपन में ही मजदूर बना दिया जाता है। वे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, उनका वर्तमान अंधेरे में धकेला जा रहा है। हम अक्सर सवाल पूछते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कुछ लोग कहते हैं गरीबी इसकी मुख्य वजह है। जब दो वक्त की रोटी का संकट हो तो माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ गरीब परिवार ही इसका जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं, हम और आप भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। कई बार हम लोग अपने घरों, दुकानों या कारखानों में सस्ते मजदूर के लालच में इन छोटे बच्चों को काम पर रख लेते हैं। क्या हमें यह दिखाई नहीं देता कि हम एक बच्चे का उससे उसका भविष्य छीन रहे हैं? दोस्तों, बाल मजदूरी एक कानूनी अपराध है, लेकिन सबसे पहले यह एक सामाजिक अपराध है। यह बात हमें समझना होगा। बाल श्रम केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबका सामूहिक दायित्व है। यदि हम अपने आसपास किसी बच्चों को कार्य करते देखते हैं तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हमें यह संकल्प लेना होगा कि 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे से हम कोई भी मजदूरी नहीं कराएंगे। अगर कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित है तो हम अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करेंगे। बाल श्रम मुक्त समाज की स्थापना ही एक के विकसित और सभ्य देश की पहचान है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम इस कलंक को मिटाने में अपना पूरा योगदान देंगे। हर बच्चा स्कूल जाएगा, कोई बच्चा काम नहीं करेगा, तभी हमारा देश सही मायने में आगे बढ़ेगा। और अब अपनी चर्चा को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक और गीत।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना 102 नॉट आउट फिल्म का ये गीत। और अब कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं और चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। दोस्तों ज़रा सोचिए, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और कलम होनी चाहिए,

दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया का चाबी छिपी है खेल के मैदान में। खेल केवल शारीरिक कसरत या पसीना बहाने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का सबसे बेहतरीन माध्यम है। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहां हम घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, वहीं खेल हमें चुस्त दुरुस्त और बीमारियों से दूर रखते हैं। नियमित रूप से खेलने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और रक्त संचार भी हमारा बेहतर होता है और दिल की सेहत इससे सुधरती है। दोस्तों, खेल का दायरा केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। मैदान पर जब हम अपना पसीना बहाते हैं तो हमारा मानसिक तनाव भी दूर होता है और इससे हमें नई ऊर्जा मिलती है। खेल हमें हार से सीखने और जीत का जश्न मनाना भी सिखाते हैं, जिससे हमारे अंदर धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होता है। टीम में खेलने से आपसी सहयोग, एकता और भाईचारे की भी भावना पैदा होती है, जिसे कि हम टीम वर्क कहते हैं। ये वो गुण है जो कि न सिर्फ खेल के मैदान में बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमारे काम आते हैं। विद्यार्थी जीवन के लिए तो खेलों का महत्व और भी अधिक है। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लेने से छात्रों की एकाग्रता बढ़ती है, और हाँ, आज के समय में खेल सिर्फ एक शौक नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक शानदार कैरियर का भी विकल्प हमारे लिए बन चुके हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, चाहे वो कोई आउटडोर खेल हो, या जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, या फिर कबड्डी, या फिर इंडोर गेम, हम अपने दैनिक जीवन में खेल के लिए कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। दिन में सिर्फ आधा घंटा खेलना भी आपके मूड को बेहतर और आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकता है। तो आइए आज से ही खेलों को अपने जीवन को अभिन्न अंग बनाएं, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक और गीत।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और चलते चलते एक नज़र डालते हैं खेल के मैदान से। फीफा वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल का महाकुंभ का आगाज आज से शुरू होने वाला है। आज पहला मुकाबला मेज़बान मैक्सिको का दक्षिण अफ्रीका से होगा और भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। हार्दिक के पैर में खिंचाव आ गया है और अफगानिस्तान सीरीज के लिए वनडे टीम में उन्हें चुना गया था, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर थी। हालांकि नई चोट उभरने से वो सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में तीसरी वरीय भारत की पीवी सिंधु ने पेरू की इनेस लूसिया कास्ट टिलो सालजार को महज 32 मिनट में 21-13, 21-11 से हराकर दूसरे दौर में अपनी जगह बनाई है। वहीं वर्ल्ड नंबर 36 युवा शटलर तन्वी शर्मा ने बड़ा उलटफेर करते हुए वर्ल्ड नंबर 11 ताइवान की च्यू पिन चियान को 21-12, 21-20 से मात दी। अब दूसरे दौर में सिंधु का सामना हमवतन वर्ल्ड नंबर 39 ईसरानी बरुआ से होगा, जबकि तन्वी भी हमौतन मालविका बंसोर से भिड़ेंगी। लगभग 4 साल बाद कोर्ट पर लौटी अमेरिका की दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने शानदार अंदाज में अपनी जीत दर्ज की है। 44 वर्षीय सेरेना ने क्वींस क्लब चैंपियनशिप के महिला डबल्स में कनाडा की 18 वर्षीय विक्टोरिया के साथ है तीसरी सीड जोड़ी को हराया। सेरेना विक्टोरिया ने निकोल मेलिचार और मार्टिनेज और एरिन रुटलीफ को 7-6, 6-2 से मात दी। और अब आपको चलते चलते कार्यक्रम में एक और गीत हम सुनवाते हैं।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारा अगला प्रसारण बस अब से कुछ ही पलों में।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगा हर्ट्ज पर। शाम के 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। आज के कलाकार हैं सुरेंद्र प्रसाद।

सुरेंद्र प्रसाद के गाए इसी गीत के साथ ही भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। अब आपके लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ निखिल आनंद गिरी से भोजपुरी में समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले बाड़न कि दुनिया में मचल उथल पुथल और अस्थिरता के दौर में भी भारत पूरा भरोसा और मजबूत इरादा के साथे विकास के राह पर आगे बढ़ रहल बा। श्री मोदी नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वां शासी परिषद के बैठक के अध्यक्षता करत घड़ी ये बात कहले। प्रधानमंत्री कहले कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़त बा, वैसे ही केंद्र और राज्य सरकारन के सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़त जात बा। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सभ्य राज्यन और केंद्र शासित प्रदेशन के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल लोग शामिल रहे। बिहार विधान परिषद के 10 सीट खातिर सभ्य उम्मीदवार लोग निर्विरोध चुन लिहल गइल बाड़न। 10 सीटन पर भयली चुनाव में एनडीए 9 सीट पर और महागठबंधन 1 सीट पर जीत हासिल कैले बा। भाजपा से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित के जीत मिलल बा। ओहिजा जदयू से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद जीतल बाड़े। चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी के जीत मिलल बा। महागठबंधन की ओर से 1 सीट पर राजद के सुनील कुमार सिंह जीतल बाड़न। बिहार में मॉनसून आपन दस्तक दे दिहले बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार आ मधुबनी जिला में पहुंच चुकल बा। ए बार मॉनसून आपन तय समय से 6 दिन पहले बिहार पहुंचल बा। विभाग कहलस कि मॉनसून के फैलाव खातिर अनुकूल परिस्थितियन बनल बा आ अगला 2 से

तीन दिन में पूरा राज्य में मॉनसून के बुन्नी पड़ल शुरू हो जाए। ये दौरान पिछला 24 घंटा में मॉनसून के प्रभाव से किशनगंज जिला में भारी बरसात दर्ज कैल गई बा। तैयबपुर में रिकॉर्ड 148 मिलीमीटर बरसात भइल बा। विभाग अपना पूर्वानुमान में कहले बा कि काले राज्य के बेसी हिस्सा में बरसात के संभावना बा। ये समय पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आ गोपालगंज जिला में बहुत भारी बरसात के चेतावनी जारी कैल गई बा। साथ ही अररिया, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया आ सहरसा समेत 14 जिला में भारी बरखा के अलर्ट भी जारी बा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग राजस्व महाअभियान के तहत आयल अर्जियन के निपटाई खातिर आज से सभ्य अंचलन में विशेष अभियान के शुरुआत कैले बा। 17 जून तक चले वाला ई अभियान के दौरान 46 लाख आवेदन के पूरा करे के लक्ष्य रखल गइल बा। पटना के डुमरी में 100 एकड़ में खेल सिटी के निर्माण कैल जाए। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह आज विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान ई जानकारी दिली। वो बतौली कि अरवल, मधेपुरा और किशनगंज जिला में 15 जून से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू हो जाए। साथ ही सीवान, मुंगेर और जमुई में फुटबॉल खातिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनावल जाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट के शैक्षणिक स्तर 2026-28 में एडमिशन के खातिर तीसरा चयन सूची माने थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर देले बिया। पहली और दूसरी लिस्ट के बाद बच्चल सीट के आधार पर तैयार कल गई सूची में शामिल छात्र लोग 14 जून तक अपन अपन स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले सकी हैं। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के टीम हाजीपुर नगर परिषद के अकाउंटेंट मनीष कुमार के दूगो ठिकाना पर छापेमारी कैलस। मिलल जानकारी के मुताबिक उनके हाजीपुर के बागमली स्थित घर और नगर परिषद ऑफिस कैंपस में बनल सरकारी आवास पर छापा मारल गई। कमाई से ज्यादा संपत्ति के मामला में ये कार्रवाई कैल गई बा। छापेमारी के दौरान लाखों रुपया के गहना, आलिशान घर, संपत्ति के कागजात और गाड़ी बरामद कैल गई बा। रोहतास जिला के डेहरी स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ के दौरान 5 को ट्रेनी जवान भारी गर्मी के चलते बेहोश हो गए हैं। इनमें से एगो ट्रेनी सिपाही श्रीराम कुमार के पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। पश्चिम चंपारण जिला के बगहा से फेसबुक पर हथियार के साथे फोटो वायरल करे के मामला में 3 गो आरोपी लोग के गिरफ्तार कैल गई बा। इनकर पास से एगो देसी पिस्तौल भी बरामद भइल बा। बक्सर जिला के डुमराव और राजपुर प्रखंड में विशेष टीम संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चला के 4 गो बाल मजदूरन के मुक्त करौलस। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।

प्रस्तुत है किसान बहनों एवं भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी श्रोता भाई लोगन के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा और साथे साथे सुमन भाई रोरो के नमस्कार बा।
1: सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई के ओर से प्रणाम और मनु भाई रोरो के नमस्कार।
0: देखी सुमन भाई, आजकल मौसम तो किसान भाई लोग अनुकूल चल रहा है,
1: एकदम
0: नर्सरी तैयार करे के भी समय एकदम निकल रहा बा। ऐसन में किसान भाई लोग चिंतित रहन कि भाई पानी होई ना होई, लेकिन पानी बढ़िया होता, पानी नहर भी देता तो हमने के नर्सरी तैयार कर लिया आ जैसन कि खाद वगैरह के भी कुछ थोड़ा मड़ा दिक्कत बा, लेकिन दिक्कत कहीं बा ना, आदमी अपने से अभी जितना जरूरत हो उतना खाद ले सकत नहीं हमने के।
1: देखिए मनु भाई, हमने के हैं जोन एकरा के जी पुराना साहबाद के जोन क्षेत्र बा हमने के
0: जी जी
1: वरा के धान के कटोरा कहल जाला
0: जी।
1: धान के कटोरा एकरा के सोन नहर बनौले बा
0: जी।
1: सोन नहरन में पानी एक जून से छोड़ दिहल गइल बा, अधिकांश जगह पर पहुँच भी गइल बा पानी, और बिया डाले के जोन धान के बिया डाले के जोन सिलसिला बा रोहिणी नक्षत्र में भी बहुत जगह पड़ल बा बिया
0: जी।
1: और हमने के किसान देखें परंपरागत के साथ साथ प्रयोगधर्मी भी हम
0: जी जी
1: वो प्रयोग करत रहे हन, कहाँ के बिया बढ़िया बा, कहाँ के कहीं ना कहीं अच्छा बीज के उपयोग करेलन और बढ़िया से खेती करलन धान आ गेहूँ के। तो धान के खेती खातिर जोन सरकारी जोन कृषि विभाग के जोन आंकड़ा बा कि जोन खाद के जितना कंपनी बाड़ी सन वो महीना बार वहनी के लक्ष्य बा
0: जी,
1: कि इतना लक्ष्य हमरा के खरीफ फसल में है महीना में इतना देवे के बा। तो अभी जोन लक्ष्य बा काफ़ी कम बा, बिचड़ा डाले खातिर जरूरत भी कम बा खाद के, लेकिन जब रोपनी शुरू हुई तो खाद के हमने के जरूरत पड़ी। तो किसान भाई लोग अभी अपन खाद के पूरा व्यवस्था करके कि भाई हम बिया डालब और फिर 15-20 दिन एक महीना के बाद में रोपनी जब धर ली रोहिणी नक्षत्र वाला बिया के तो हम ओकर व्यवस्था करी। तो एह के चलते किसान दुकानन पर भीड़ भी बढ़ रहा बा, कृषि विभाग के दावा बा कि हमारा पास पर्याप्त यूरिया भी बा और सब खाद जोन जरूरत के बा तौन भी बा और हम निर्धारित दाम पर बेचत नहीं
0: जी।
1: लेकिन किसान भाई लोग के
0: अभी संतोष नहीं है,
1: संतोष नहीं
0: असल में पुराना पद्धति जोन बा किसान भाई लोग पहले ही से सोच रहे, कहीं कहीं देहात में सुमन भाई रोड ना रहे, सड़क ना रहे तो आदमी पहले ही खरीद के धर लेते रहे,
1: लेकिन
0: आज तो रोड सड़क बिजली सब पर्याप्त बा तो आज खरीद के धरे की कोनो जरूरत बा ना।
1: नहीं मनु भाई, लेकिन किसान भाई लोग के भी जोन सोच बा कि वो घड़ी एकाएक ना मिले, लंबा लंबा लाइन लगे लगेला एक और जहाँ अब जोता गई खेत कबरिहार के बिया के बारे वाला के तय कर दलन, रोपनिहार के तय कर दलन, अब वो खाद खातिर लाइन में तो ना लगी हन
0: ना, ना।
1: तो सब व्यवस्था करके रखल चाहेलन। तो अभी कोई कोई के मैंने अधिकांश जगह पर 2 बोरी खाद एक आधार कार्ड पर एक दिन में मिल जाता, वकरा बाद में भी जितना चाहिए ना वो अनुसार मिल जाए 2-2 बोरी।
0: हाँ, आज के अभी थोड़ा कार्यक्रम के संक्षेप
1: और एक मिनट एकरा में हम और समय ले
0: जी जी।
1: हम किसान भाई लोग के बतावल चाहब कि ऐजा के जे जिला कृषि पदाधिकारी रोहतास जिला के बाड़न उनकर कहना बा कि अगर कोई न्यूनतम समर्थन जोन ओकर दाम जोन लिखल बा जोन अधिकतम निर्धारित जोन मूल्य बा बोरी पर जोन दाम छपल बा अगर ओकरा से अधिक कोई दुकानदार अगर खाद के दाम लेता तो ओकर तत्काल सूचना दे जिला प्रशासन के, जिला पदाधिकारी के देश, SDO के देश, BDO के देश, उनका पर कार्रवाई भी कर जाइए, ऐसे अधिक दाम पर कालाबाजारी करके खाद मत खरीदो।
0: जी जी, तो देखें सुमन भाई हमने के आज के कार्यक्रम की थोड़ा संक्षिप्त जानकारी ले जा, अभी हमने के आज की खबरें के तहत कुछ कृषि संबंधी खबर जानल जाए आ फिर एक बाद आज की बातें के तहत एगो वार्ता सुनल जाए, विषय रही धान के खेती कैसे कर जाओ। आज के वार्ताकार रहे डॉक्टर KK प्रसाद जी। फिर नई उम्र की नई फसल के तहत आज जानल जी धान के नर्सरी समय पर लगावे से का फायदा बा। कार्यक्रम में कुछ संदेश भी सुनल जी आ कार्यक्रम के अंत में हमने के मौसम के पूर्वानुमान भी जानल जी। तो देखो तनी कृषि संबंधी खबर लेके तैयार बनी, थोड़ा फरिया फरिया के बताई किसान भाई लोग के आज के खबर का बा।
1: देखें जोन हमनी के आज सबसे पहले जाओ कि धान के खेती खातिर
0: जी
1: हर पंचायते पंचायत कृषि विभाग जोन बा तो कृषि जन कल्याण चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर रहा बा।

0: एकर एकरा खातिर ई आजे से शुरू भइल बा और 23 जून तक ई कार्यक्रम चली। हर पंचायत में एक एक दिन के तय कइल गइल बा रूपरेखा। एकरा में बा मनु भाई की एकरा में उन्नत और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करे खातिर किसान भाई लोग के जागरूक कइल जा रहल बा, उनका के प्रशिक्षित कइल जा रहल बा और ई बतावल जा रहल बा कि भाई अगर अधिक से अधिक तोरा उत्पादन लेवे के बा तो हमरा कौन कौन खाद के कतना मात्रा डाले के बा, मिट्टी के जाँच करौले बा निके निके करौले, और बीज जौन बा तो कैसनों मत हम प्रयोग करें बल्कि वो प्रमाणिक बीज होके और खाली फोटो खींच के खूब चमचमात बढ़िया निके लेवे के ओकर ब्रांड देख के लेवे के बा कि भाई अच्छा बीज हो कि ना हो।
1: जी
0: तो ई कार्यक्रम जौन बा एकर मुख्य उद्देश्य ये बा कि फसल के उत्पादकता और कुल उत्पादन में हमनी के वृद्धि कइल बा कि जितना पहले हमनी के धान होत रहे ओकरा से अधिक धान कैसे ले जाओ, कैसे उत्पादन कइल जाए, एकरा बारे में बतावल जा रहल बा। चिन्हित फसल के क्लस्टर में खेती के बढ़ावा भी एकरा ले मिली और एकरा में कृषि से संबंधित नवीनतम और वैज्ञानिक तरीका से खेती करे के जानकारी भी दिहल जा रहल बा। अलग अलग पंचायत में अलग अलग तिथि निर्धारित कइल गइल बा। और एक खबर और बा कि जौन गेहूँ के बोरी के कमी हो गइल बा, जौना के चलते भंडारण के कार्य काफ़ी प्रभावित हो रहा बा, बरसात भी आ गई
1: जी।
0: तो जौन हमने के पैक से जौन गेहूँ खरीदले रहे तो एकरा के लक्ष्य के तुलना में ऐसे ही कम खरीदाइल बा, मात्र 1500 मेट्रिक टन गेहूँ के ऐजा खरीदारी भइल बा और गेहूँ के बोरी मिलत नहीं है कि जौना के SFC के जमा कर जाओ। जिला सहकारिता पदाधिकारी नयन प्रकाश बतावत मानी कि खरीदल गेहूँ के राज्य खाद्य निगम के गोदाम में जमा करे के बा, लेकिन अभी तक पर्याप्त जूट के बोरी उपलब्ध ना होके से भंडारण के कार्य प्रभावित हो रहा बा, जौना से कि गेहूँ बर्बाद होके भी संभावना बा।
1: देखिए सुमन, ये बड़ा बढ़िया बड़ा खबर बतौनी, आशा बा किसान भाई लोग एक खबर से जरूर लाभ ले जा। आई आज हमनी के धान के खेती कैसे कर जा एक पे वार्ता सुनल जा। वार्ताकार बनी आज के डॉक्टर के प्रसाद, आई सुनल जा।
2: जल संसाधनों की प्रचुरता, भौगोलिक स्थिति, मृदा संरचना एवं अनुकूल जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार धान के उत्पादन के लिए अनूठा है। उन्नत बीज, शस्य की नवीन तकनीकी, संतुलित खाद, समुचित जल प्रबंध एवं पौधा संरक्षण उपायों को वैज्ञानिक ढंग से अपनाकर धान उत्पादन एवं उत्पादकता में एक नई क्रांति लाई जा सकती है। हमारे प्रदेश में धान की विभिन्न किस्में उगाई जाती हैं। किस्मों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए भूमि की स्थिति एवं जल की उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त प्रभेदों का चुनाव करना चाहिए। ऊंची जमीन एवं बाढ़ के बाद के अवस्था में तुरंत ताप प्रभेद का चुनाव करना चाहिए। इसकी तैयार होने की अवधि 70 से 80 दिनों की है। दाना लंबा मोटा होता है तथा इसकी उपज क्षमता 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ऊंची एवं मध्य ऊंची जमीन हेतु प्रभात, पूसा 834, पंत धान 14 एवं सीता प्रभेद प्रमुख हैं। ये करीब 100 से 110 दिनों में परिपक्व हो जाते हैं। दाना लंबा एवं पतला होता है तथा इनकी उपज क्षमता 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मध्यम सिंचित एवं छिछले खेतों के लिए कनक, राजेंद्र, मसूरी 1 उपयुक्त प्रभेद हैं। इनके तैयार होने की अवधि 135 से 140 दिनों की होती है। कनक प्रभेद का दाना लंबा एवं मोटा तथा राजेंद्र मसूरी 1 का मध्यम पतला होता है। इनकी उपज क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। असिंचित नीची जमीन हेतु सत्यम एवं शकुंतला प्रभेद उत्तम पाया गया है। इनकी परिपक्व होने की अवधि 140 से 145 दिनों की है। सत्यम प्रभेद का दाना लंबा एवं मोटा तथा शकुंतला का दाना मध्यम पतला होता है। इनकी उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मध्यम सिंचित जमीन के लिए सुगंधित एवं महीन चावल वाली किस्मों में पूसा बासमती 1, राजेंद्र बासमती 1, राजेंद्र कस्तूरी, सुगंध 2 व 3 एवं राजेंद्र श्वेता प्रमुख हैं। ये 125 से 130 दिनों में परिपक्व हो जाते हैं। इनके दाने लंबे व पतले होते हैं। सिंचित व असिंचित अवस्था हेतु नीची जमीन के लिए सुगंधा एवं कामनी प्रभेद उपयुक्त होते हैं। इनके फसल तैयार होने का समय नवंबर के अंतिम सप्ताह होता है। इन प्रभेदों के दाने मध्यम पतले तथा उपज क्षमता 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। संकर धान की किस्मों में ऊंची एवं मध्यम सिंचित जमीन के लिए पंत संकर धान 1 उपयुक्त पाया गया है। इसकी परिपक्वता की अवधि 110 से 115 दिनों की होती है। दाना लंबा पतला तथा उपज क्षमता 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। मध्यम सिंचित खेतों के लिए PHB 71, KRH 2

एवं पूसा RH10 प्रमुख प्रभेद हैं। ये 120 से 130 दिनों में परिपक्व हो जाते हैं तथा दाने लंबे व पतले होते हैं। इनकी उपज क्षमता 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। धान के उन्नत पैकेज प्रणाली में विकसित किए गए नए सस्य तकनीकों को उपयुक्त स्थान और समय पर बिहार के खेतों में लागू करने से धान की उपज में न सिर्फ बढ़ोतरी की सुनिश्चितता है बल्कि महंगे उपादानों का मितव्ययी व्यवहार भी है। ऊंचे जमीन के लिए 75 से 120 दिनों का, मध्यम जमीन हेतु 125 से 140 दिनों का तथा नीची जमीन के लिए 140 से 160 दिनों का प्रभेद का चयन करना चाहिए। सामान्यतः रोपा विधि में तीनों प्रकार की भूमि के लिए 40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। ऊंची जमीन के लिए 22 जून से 5 जुलाई आद्रा नक्षत्र में, मध्यम जमीन के लिए 8 से 21 जून मृगशिरा नक्षत्र में तथा नीची जमीन हेतु 25 मई से 7 जून रोहिणी नक्षत्र में बीजों का बुनाई करना उत्तम होता है। रोपनी विधि से धान की खेती करने हेतु बिजड़ा तैयार करना आवश्यक है। रोपनी के बाद धान के पौधों में जड़ों का विकास एवं वानस्पतिक वृद्धि यानी लंबाई, पत्तियों एवं कल्लों आदि का तेजी से वृद्धि होना अधिक उपज प्राप्त करने के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि धान की रोपनी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बिजड़ों से किया जाए। एक आदर्श धान का बिजड़ा छोटा, मोटा, भारी एवं कीट व्याधि से मुक्त होना चाहिए। ऊंचे भूमि के लिए 20 से 25, मध्यम के लिए 25 से 30 एवं नीची जमीन के लिए 30 से 35 दिनों का बिजड़े उत्तम होते हैं। तीनों प्रकार के भूमि में 2 से 3 पौध प्रति हिल उपयुक्त होते हैं, लेकिन पौधे की संख्या प्रति हिल 1 से 2 रखने पर अनुशंसित बीज दर में 50% तक की कमी की जा सकती है। ऊंचे, मध्यम एवं नीची खेतों में पंक्ति एवं पौधों की दूरी क्रमशः 15x15, 20x15 एवं 20x15 सेंटीमीटर होना चाहिए। तीनों तरह के खेतों में रोपनी की गहराई 1 से 3 सेंटीमीटर उत्तम होता है। ऊंचे जमीन वाले खेतों के लिए 80 किलोग्राम नेत्रजन यानी 174 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर, जिसमें कि आधा आधारीय तथा शेष आधी बची हुई मात्रा को प्रथम उपरिवेशन के समय प्रयोग करना चाहिए। 40 किलोग्राम स्फुर यानी 250 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट, 20 किलोग्राम पोटास यानी 32 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर एवं 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी जांच के उपरांत आधारीय उर्वरक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। मध्यम एवं नीची भूमि के लिए 80 किलोग्राम नेत्रजन यानी 174 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर, जिसमें आधी आधारीय उर्वरक के रूप में तथा शेष आधी 2 बराबर भागों में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय उपरिवेशन के रूप में व्यवहार करना चाहिए। 40 किलोग्राम स्फुर यानी 250 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट, 20 किलोग्राम पोटास यानी 32 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास तथा मिट्टी जांच के आधार पर 20 किलोग्राम सल्फर एवं 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना श्रेयस्कर होता है। ऊंची, मध्यम एवं नीची जमीन में 3 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर रखना उत्तम पाया गया है। संकर धान की खेती उन्नतशील धान के प्रभेदों की खेती की तरह ही है। संकर धान की खेती में मात्र बीज स्थली प्रबंधन खास तरह से की जाती है। बीज स्थली में बीज की बुआई 15 से 20 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से करते हैं, जिससे 20 से 25 दिनों में 3 से 4 कल्ले वाला स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बिजड़ा तैयार हो जाता है। इसमें एक स्थान पर 1 से 2 पौधे ही लगाते हैं। संकर धान की खेती में 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। इस खेती में रोपनी की दूरी 20x15 या 15x15 सेंटीमीटर रखा जाता है। उर्वरक में नेत्रजन 120 से 150 किलोग्राम यानी 260 से 325 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर, जिसमें 25% आधारीय तथा शेष 75% का 3 बराबर भागों में रोपनी के 30, 60 एवं 90 दिनों के अंतराल पर उपरिवेशन किया जाता है। 60 किलोग्राम स्फुर यानी 375 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट प्रति हेक्टेयर कदवा के समय एवं पोटास 60 किलोग्राम यानी 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर, जिसमें 75% आधारीय तथा शेष 25% पुष्पगुच्छ बनने के प्रारंभिक अवस्था में उपरिवेशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त 20 किलोग्राम सल्फर तथा 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के दर से मिट्टी जांच के अनुसार आधारीय व्यवहार करना चाहिए। सिंचाई व कीट व्याधि का नियंत्रण आवश्यकता अनुसार करना लाभप्रद होता है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी श्री विधि मेडागास्कर देश का विकसित हुआ तथा अब इस विधि से दुनिया के कई देशों में खेती की जा रही है। इस विधि से धान की खेती करने से 3 से 4 गुना ज़्यादा उपज मिलता है, साथ ही पानी का खपत आधा से भी कम होता है। इस विधि के अंतर्गत बीज स्थली प्रबंधन में मिट्टी व गोबर

खाद को 2:1 में मिलाकर ऊंची क्यारी बनाएं। इस क्यारी में 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से फैला दें। बुआई के बाद 2 से 3 दिनों के लिए इसे पुआल से ढक दें तथा हजारा से नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करें। 10 दिनों में औसतन 15 सेंटीमीटर लंबा 2-3 पत्तियों एवं 6 सेंटीमीटर लंबे जड़ वाला पौध आसानी से तैयार हो जाता है। इस श्री विधि से रोपनी के समय बीज स्थली से पौध को इस प्रकार निकालें जिससे कि मिट्टी युक्त जड़ के साथ बीज भी लगा हुआ आसानी से निकल आए। पौध को बीज स्थली से निकालने के आधा घंटा के अंदर रोपनी कर दें। रोपनी में पंक्ति एवं पौध की दूरी 25×25 सेंटीमीटर यानी 16 हील प्रति वर्ग मीटर रखें। एक स्थान पर मात्र एक पौध ही लगाएं। पौध को तैयार खेत में अंगूठे से गाड़ें नहीं बल्कि चुटकी से जड़ को मिट्टी पर हल्का सटा कर रखें। इस विधि में हाथ से हो या कोनोबीडर द्वारा 3 से 4 बार निकौनी करें जिससे मिट्टी में वायु संचार बना रहे तथा निकौनी किए हुए खरपतवार को खेतों में ही पंक्तियों के बीच में फैला दें। श्री विधि में वनस्पतिक वृद्धि के अवस्था में खेत में जल जमाव नहीं रहने दें। पुष्प गुच्छ निकलने के पहले तक खेत में नमी की संतृप्त अवस्था एवं खेत को सुखाना यानी ओदा सूखा की स्थिति का अंतराल बनाए रखें। पुष्प गुच्छ अवस्था के बाद खेत में 3 सप्ताह तक 1 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखना चाहिए। खेत में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एवं हरी खाद आदि का भरपूर व्यवहार करना चाहिए। श्री विधि में रासायनिक उर्वरकों के कुल अनुशंसित मात्रा का आधा से भी कम मात्रा प्रयोग करना चाहिए। 0-टिल ड्रिल मशीन से धान की बुआई 2 परिस्थितियों में की जाती है। पहली परिस्थिति में गेहूं कटनी के बाद खरपतवार से मुक्त खेतों में 0-टिल ड्रिल के बीज बॉक्स में बीज एवं खाद बॉक्स में दानेदार DAP रखकर धान की बुआई करते हैं। यदि खेत में 25-30% तक नमी रहती है तो इस मशीन से आसानी से बुआई की जा सकती है। दूसरी परिस्थिति में गेहूं कटनी के बाद खरपतवार युक्त खेत में खरपतवारनाशी दवा ग्लाइफोसेट की 2.5 से 3 लीटर दवा 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर जमीन में छिड़काव करके 2 से 3 दिनों के बाद मशीन से धान की बुआई की जाती है। आमतौर पर 0-टिल ड्रिल द्वारा मध्यम एवं लंबी अवधि वाली धान के प्रभेदों का व्यवहार किया जाता है जिसमें नाटी मसूरी, सीता, सत्यम, सोनम, जयश्री एवं राजश्री इत्यादि का उपयोग कर अच्छा उपज की प्राप्ति की जा सकती है। मोटे बड़े आकार के दाने वाले धान के प्रभेदों में बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम तथा महीन एवं छोटे दाने वाले प्रभेदों के लिए 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना उत्तम होता है। 0-टिल ड्रिल मशीन से दानेदार उर्वरक विशेषकर DAP एवं NPK खेत में प्रयोग करना अच्छा होता है। धान की सीधी बुआई में 80 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर एवं 40 किलोग्राम पोटास अर्थात 142 किलोग्राम यूरिया, 124 किलोग्राम DAP एवं 64 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से अनुशंसित है जिसमें दानेदार DAP की 124 किलोग्राम मात्रा 0-टिल ड्रिल के खाद बॉक्स में तथा म्यूरेट ऑफ पोटास की 64 किलोग्राम मात्रा बुआई के पहले छींट देते हैं। यूरिया की 142 किलोग्राम मात्रा 3 बराबर हिस्सों में बांटकर बुआई के 1 महीने बाद कल्ला आने एवं गाभा फूटने के समय खेतों में उपरिवेशन करना चाहिए। नियमानुसार जब खेत में पर्याप्त नमी हो तभी बीज की बुआई करनी चाहिए। यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं हो तो उस परिस्थिति में बुआई के 2रे या 3रे दिन हल्की सिंचाई अवश्य करना चाहिए। इससे बीज का अंकुरण अच्छा होता है। सूखे की स्थिति में सिंचाई कुछ अंतराल पर करें ताकि खेतों में बाल बराबर भी दरार नहीं पड़े, तभी भरपूर उपज की प्राप्ति होती है। जिन खेतों में बुआई के पहले खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव नहीं किया गया है उन खेतों में धान की सीधी बुआई के 3 दिनों बाद और 7 दिनों के पूर्व ब्यूटाक्लोर 50% तृणनाशी की 3 लीटर दवा 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए जिससे मौसमी खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण हेतु 2-4D सोडियम साल्ट तृणनाशी की 1 से 1.25 किलोग्राम दवा 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना लाभप्रद होता है। धान की सीधी बुआई वाले फसल को भूरी चित्ती एवं झोंका रोग काफ़ी आक्रांत करते हैं, अतः भूरी चित्ती रोग नियंत्रण हेतु कवच की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर एवं झोंका रोग नियंत्रण हेतु नीम की

700 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से फसल पर 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। जब धान के पौधे के कल्ले निकलने लगे तब उस पर कार्बोफ्यूरान 3G नामक कीटनाशी को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बिखेर दें। उसके बाद पौधों में बाली निकलने के पहले मोनोक्रोटोफॉस नामक कीटनाशी की 1 लीटर दवा 800 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर की फसल पर छिड़काव करें। जीरो टिल ड्रिल द्वारा खेती करने पर कुछ खास बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जैसे इसे व्यवहार करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि खेत एकदम साफ रहे, अर्थात खर पतवार इत्यादि नहीं रहे। खाद बॉक्स में केवल दानेदार उर्वरकों DAP या NPK को ही बुआई के समय डालें ताकि पाइप में रुकावट न हो। धान की बुआई करने से पहले जीरो टिल ड्रिल मशीन का अंश शोधन कर लेना चाहिए, जिससे बीज एवं खाद निर्धारित मात्रा एवं गहराई में ही पड़े। बुआई करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बीज 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर अवश्य गिरे, अन्यथा ज़्यादा गहरा होने पर अंकुरण एवं कल्लों की संख्या कम होगी। इससे धान की

0: की बुआई करने से पहले जीरो टिल ड्रिल मशीन का अंश शोधन कर लेना चाहिए, जिससे बीज एवं खाद निर्धारित मात्रा एवं गहराई में ही पड़े। बुआई करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बीज 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर अवश्य गिरे, अन्यथा ज़्यादा गहरा होने पर अंकुरण एवं कल्लों की संख्या कम होगी, इससे धान की पैदावार में कमी आ जाएगी। खरपतवारनाशी के छिड़काव में हमेशा फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रैक्टर से जुड़े मशीन को तीव्र गति से नहीं चलाएं, ट्रैक्टर को गति उतनी ही रखें जिसके साथ श्रमिक तेजी से चल सके, ताकि बीज एवं खाद वाली पाइप अवरोध की जांच करता रहे।
1: देखें सुमन भाई, कितना निमन निमन जानकारी डॉक्टर के प्रसाद जी देनी। ये जानकारी से किसान भाई लोग जरूर लाभ ले जा। इस जानकारी खातिर के प्रसाद जी के धन्यवाद दे दिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दिहल जाओ। और मनो भाई देखी, धान के नर्सरी समय पर लगावे के चाहिए।
1: जी जी,
2: क्योंकि अगर जितना पीछे धान के रोपनी कैली उतने हमने के गेहूँ के बोनी में परेशानी हुई, देर हुई,
1: उतने नहीं उत्पादन भी
2: कम हुई। तो हमनी के चाहिए कि धान के जो नर्सरी यही से देखी, पहले आदमी रोहिणी में बिया डालत रहे।
1: जी जी,
2: और कार्यक्रम के आगे बढ़ावे से पहले कुछ संदेश बा
1: सुन लिया जाए।
2: हाँ, सुन लिया।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास

0: लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है जो फल जो देता है हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वहीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं, मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
2: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
3: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
4: देखिए सुमन भाई, अभी हमनी के संदेश सुनत रही जा, आ कुछ पत्र भी आयल बा, कुछ चिट्ठी पत्री आयल बा, लिखे वाला बा ग्राम समरिया थाना शिवसागर जिला रोहतास से लिखत रहें कि हमनी के धान के बिजरा जोन बा डालत नहीं जा आ डाले के तैयारी में बन जा, एक खातिर हमनी के का करे थे। लेकिन पत्र लिखनी एक खातिर यहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद बा, आ धान के नर्सरी तैयार करे खातिर हमेशा हमनी के बताओ तर दे जा, हमनी के कार्यक्रम सुनत रही, रउआ धान के नर्सरी तैयार कर ले, आ एकरा पहले धान के बीज गिरावे से पहले बीजोपचार बहुत जरूरी बा, बीजोपचार करके ही धान के बीजा डाली। हाँ, अब हमनी के मौसम के भी पूर्वानुमान देख लिया जा। सुमन भाई, आज तक बीत गई, कल जौन मौसम बा हमनी के अधिकतम तापमान जौन बा 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहे के संभावना बा, वर्षा 8 mm होके के संभावना बा, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता जौन बा 50% आ न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 15% रहे के संभावना बा, हवा के गति जौन बा 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकत बा। यही के साथ समय तो एकदम समाप्त हो गए, चलत चलत के बेरा से सभी कोई के मनु भाई के तरफ से नमस्कार और साथ साथ सुमन भाई रोगों के नमस्कार बा।
5: सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई की ओर से प्रणाम, मनु भाई रोगों के नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे किसान बहनों एवं भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मनोज तिवारी की आवाज़ से। फिल्म के नाम है जरूर कौनो बात बा। गीतकार संगीतकार सुजीत कुमार चौबे।

ये गीत गीतकार संगीतकार सुजीत कुमार चौबे। और अब लीजिए सुनिए पलक मुच्छल की आवाज़ में फिल्म भाई बनल पटीदार का ये गीत। गीतकार संजीत निर्मल और संगीतकार अमन अश्लोक का।

0: विनय आनंद और पामेला जैन के गाए इसी गीत के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब लीजिए सुनिए हमारा प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
1: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबों का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है, घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर

0: अपना इलाज भी करवा सकते हैं।
1: नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नंबर है 6206803040। जी हाँ, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं 6206803040। आप दिल खोलकर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हाँ इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं, कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी, और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया, और नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं, और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ क्या कहना चाहिएगा इस पर?
2: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गाँव जैसे जगहों पर, और अब धीरे धीरे खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से लोगों में ये अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ, रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है, जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है, और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं, बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
1: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
2: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली NCR से भी पेशेंट आ रहे हैं।
1: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे, कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नंबर है 6206803040। जी हाँ, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं 6206803040। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके, और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
2: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना, तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर

0: पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहां पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहां पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहां पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायना नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन हैं, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
0: देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, आईसीयूज में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर आईसीयूज हैं, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास है। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों का इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
1: अच्छा एक बात डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में कैसे आती है?
0: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में तभी हो जाता है, तो ये पता तभी लगता है ऑफ कोर्स जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोस होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे के हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा ये होता क्यों है, तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है, तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है, तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है। और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए,
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, ये सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नंबर है 6206803040। जी हाँ, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं 6206803040। ये नंबर है, इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है, क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
0: देखिए मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डिफिशियंसी है उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मेल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है, तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयाँ जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट की बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है, बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
1: अच्छा एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: देखिए अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामढ़ी, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर

0: दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
1: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी रीच हर एक सप्ताह करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नंबर है 6206803040। जी हाँ, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 6206803040। तो बस आज हमें यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान
1: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री के विजन 7 निश्चय भाग 3 सबका सम्मान जीवन आसान की मूल भावना को धरातल पर उतारने के लिए एक के महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोटर महानिरीक्षक के त्रिपाठी और बिहार पब्लिक स्कूल एवं चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार के बीच स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान MYI के त्रिपाठी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री का 7 निश्चय 3 हर बच्चे के जीवन को सुरक्षित और सुगम बनाने का संकल्प है।

जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार की बाल हृदय योजना रोहतास जिले में प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत हृदय रोग से ग्रसित बच्चों की पहचान कर उन्हें राज्य सरकार द्वारा चिन्हित उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस संबंध में रोहतास के सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने बताया कि

जन्मजात हृदय रोग का समय पर पता चल जाने पर बच्चों का सफल उपचार संभव है। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि यदि बच्चों में हृदय रोग से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। जिले में बिहार बोर्ड के 9वीं और 10वीं की त्रिमासिक परीक्षा 1 से 3 जुलाई तक होगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 तक होगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5:15 तक चलेगी।

सूर्यपुरा प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोलियो उन्मूलन अभियान को लेकर आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। BCM धनंजय कुमार ने बताया कि चिकित्सा पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में आगामी 28 जून से 2 जुलाई तक चलने वाले पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए घर घर दवा पिलाने का कार्य किया जाएगा। और अब बात कैमूर जिले की। खरीफ की बुवाई से पहले किसानों को दोहरा फायदा देने के लिए मंगलवार को कुद्रा प्रखंड सभागार में शारदीय रबी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सघनता अभियान के साथ साथ खेत बचाओ अभियान को भी जोर दिया गया। कृषि वैज्ञानिकों, कृषि समन्वयकों और पदाधिकारियों ने 60 से अधिक किसानों को समझाया कि अगर खेत को बचाना है तो मिट्टी बचानी होगी। मिट्टी बचेगी तो पैदावार बढ़ेगी और किसान समृद्ध बनेगा।

और कैमूर जिले के लाभार्थियों के खाते में भेजी गई मई की पेंशन राशि मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशन राशि बैंक खातों में किया हस्तांतरण। और अब श्रोताओं आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक गीत।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए इसी गीत के साथ ही गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: AIR at 90.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के सपने को साकार करने में केंद्र और राज्य सरकारों का सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, एनडीए के खाते में 9 और महागठबंधन के खाते में आई 1 सीट। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक, किशनगंज के तैयबपुर में रिकॉर्ड 148 मिलीमीटर बारिश हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल थे। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। द्विवार्षिक चुनाव के तहत 9 और 1 सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद इन सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई। सभी प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: 10 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए के खाते में 9 जबकि महागठबंधन के खाते में 1 सीट आई है। भाजपा से भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को जीत मिली है। जदयू से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद

0: विजयी हुए हैं। ललन प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट के लिए उम्मीदवार थे। चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को जीत मिली है। महागठबंधन की ओर से एक सीट पर राजद के सुनील कुमार सिंह विजयी हुए हैं। निधिश्री, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि वे बिहार को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे।
2: पिताजी की जो नीतियां रही हैं, उनकी जो विचारधारा रही है विकास को लेकर बिहार का, उसको मैं जारी रखने की कोशिश करूंगा। मेरा सौभाग्य है कि जिस सदन में पिताजी बैठे उसमें मैं बैठूंगा और

0: ने के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि वे बिहार को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे।
1: पिताजी की जो नीतियां रही हैं, उनकी जो विचारधारा रही है विकास को लेकर बिहार का, उसको मैं जारी रखने की कोशिश करूंगा। मेरा सौभाग्य है कि जिस सदन में पिताजी बैठे उसमें मैं बैठूंगा, और जो भी बिहार के लिए, समृद्ध बिहार, विकसित बिहार बनाने के लिए जो भी उससे हो सकेगा मैं करूंगा। जो भी पिताजी के बिहार को समृद्ध बनाने का सपना, उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा।
0: राजद के नवनिर्वाचित विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि वे पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
2: मैं पुनः आज वादा करता हूं कि जिस विश्वास के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे सदन में भेजा है, उसमें 100% खरा उतरने का काम करूंगा। मुद्दा चाहे किसानों का हो, मुद्दा चाहे बेरोजगारों का हो, मुद्दा चाहे अल्पसंख्यकों का हो, कभी भी राष्ट्रीय जनता दल का झंडा सदन में झुकने नहीं दूंगा।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगले 1000 दिनों में मास्टर प्लान बनाकर आकाशवाणी और दूरदर्शन का कायाकल्प किया जाएगा।
3: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: राज्य सरकार ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के कोचिंग, निजी ट्यूशन और व्यावसायिक संस्थानों में काम करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कठोर और अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के निपटारे के लिए आज से सभी अंचलों में विशेष अभियान की शुरुआत की है। 17 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पटना में आयोजित कार्यक्रम में विभागीय सचिवों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से 18,894 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस राशि से आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन प्रभावित क्षेत्रों में भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। पटना के डुमरी में 100 एकड़ में खेल सिटी का निर्माण किया जाएगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने आज विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अरवल, मधेपुरा और किशनगंज जिले में 15 जून से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू हो जाएगा। साथ ही सिवान, मुंगेर और जमुई में फुटबॉल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। बैठक में बीसीसीआई द्वारा चयनित बिहार के खिलाड़ियों को मेडल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत शामिल करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार और मधुबनी जिले में पहुंच चुका है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 6 दिन पहले बिहार पहुंचा है। विभाग ने कहा है कि मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूरे राज्य में मॉनसून की बारिश शुरू हो जाएगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून के प्रभाव से किशनगंज जिले में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। जिले के तैयबपुर में रिकॉर्ड 148 मिलीमीटर बारिश हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है।
1: पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। सारण एवं सिवान जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में मधेपुरा जिले के खापुर पंचायत के परेल गांव में एक दंपति की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि दंपति मक्का फसल की तैयारी के लिए खेत में गए थे और उसी दौरान यह घटना हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियों का कार्य केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अतुलनीय योगदान देती हैं। न्यायालय ने कहा कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द समाज में उनके योगदान को कम आंकता है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देखभाल और घर के प्रबंधन सहित घरेलू काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल मनीष कुमार के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके हाजीपुर के बागमली स्थित आवास और नगर परिषद कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए मूल्य के आभूषण, आलिशान घर, संपत्ति के कागजात और वाहन बरामद किए गए। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत एनटीपीसी पार्ट में 48 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। इंडक्शन कार्यक्रम में एनटीपीसी पार्ट के कार्यकारी निदेशक सी सत्यराम कृष्णा ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्हें सीखने और पेशेवर विकास के इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भवन रावत ने पटना के बोरिंग रोड में मेन होल की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत और एक अन्य के बीमार होने के मामले में राज्य सरकार से 30 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। साथ ही उन्होंने दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की भी मांग की। रोहतास जिले के डेहरी स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में दौड़ के दौरान 5 प्रशिक्षु जवान भीषण गर्मी के चलते बेहोश हो गए। इनमें से एक प्रशिक्षु सिपाही श्रीराम कुमार की पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत कठरंग गांव में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान घायल हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला से फेसबुक पर हथियार संग फोटो वायरल करने के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक देशी पिस्तौल भी बरामद किया गया। बक्सर जिले के डुमरांव और राजपुर प्रखंड में विशेष धावा दल ने छापेमारी अभियान चलाकर 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। मधुबनी जिले के जयनगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 अवैध लॉटरी कारोबारियों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया। शेखपुरा के एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत 25 लोगों के

0: गुमशुदा मोबाइल उन्हें सौंपे। मुंगेर के किला परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम में आज से 4 दिवसीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। मेले में विभिन्न प्रकाशकों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के सपने को साकार करने में केंद्र और राज्य सरकारों का सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, एनडीए के खाते में 9 और महागठबंधन के खाते में आई 1 सीट। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और बिहार में मॉनसून नीति दस्तक, किशनगंज के तैयबपुर में रिकॉर्ड 148 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी पटना है, प्रस्तुत है अरवल जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार का है और इसे पेश कर रहे हैं निखिल आनंद गिरी। आज सुबह अरवल जिले के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश होने से पिछले कुछ दिनों से अरवल जिला में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अचानक बदले मौसम ने जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर तेज हवाओं के कारण जिले के कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। इधर आंधी तूफान की वजह से जिले के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले पूरा जिला भीषण गर्मी और उमस की चपेट में था। बारिश के कारण जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इधर रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद अरवल जिले में इन दिनों किसान अपने खेतों में धान के बिचड़े डालने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर चुके हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 46,154 हेक्टेयर में खरीफ की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत धान की सबसे अधिक 45,573 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अरहर और अन्य दलहन फसलों की खेती 373 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान

0: को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा बीज पर अनुदान भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में 187 क्विंटल धान बीज किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए पंजीकृत किसान बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर बीज प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके तहत यूरिया 3133 मैट्रिक टन, डीएपी 713 मैट्रिक टन सहित अन्य उर्वरक किसानों को निर्धारित दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर जिला भाजपा कार्यालय में स्थानीय विधायक मनोज कुमार के नेतृत्व में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सरकार की नीतियों और किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की ओर से बीते दिनों 2 दिवसीय भाजपा प्रशिक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक कार्यों, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा पार्टी की विचारधारा से और अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ना बताया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, सांसद शिवेश राम तथा विधायक मनोज शर्मा ने संयुक्त रूप से इस अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं के लिए संगठन की रीढ़ को मजबूत करने का माध्यम है, जिससे वे जनता के बीच सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। राज्य सरकार के सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिले के आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों जिले के करपी प्रखंड के खजूरी पंचायत में प्रभारी मंत्री दीपक प्रकाश द्वारा सहयोग शिविर का उद्घाटन किया गया तथा प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। वहीं जिले के प्रभारी सचिव अमीशा जैन ने कुर्था प्रखंड के मानिकपुर और निघवा पंचायत में सहयोग शिविर का निरीक्षण किया। जिले में आयोजित शिविरों में कुल 1328 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 478 आवेदनों का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया। शेष आवेदनों को 30 दिनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का निर्देश प्रभारी सचिव द्वारा दिया गया। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा अरवल शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कोरियम से बैदराबाद तक सोन नहर के किनारे लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बाईपास का विधिवत शिलान्यास किया। इस बाईपास के निर्माण से शहर में यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है, जिससे आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगा। साथ ही यह परियोजना स्थानीय विकास को गति देने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने में भी सहायक होगी। इस अवसर पर पूर्व सांसद अरुण कुमार और स्थानीय विधायक मनोज शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिले में मधुश्रावणी मलमास मेला पारंपरिक धार्मिक आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक उल्लास के साथ भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह मेला स्थानीय धार्मिक परंपराओं और लोक आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर पूजा अर्चना और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। बीते 17 मई को इस मेले का विधिवत ध्वजारोहण स्थानीय विधायक मनोज शर्मा, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। अरवल जिले में महिला विकास निगम द्वारा समाहरणालय स्थित सभागार में बीते दिनों वर्ष 2026 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी अमृषा वैश ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिलाओं का शिक्षित होना समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी आप सुन रहे थे अरवल जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार का था और इसे प्रस्तुत कर रहे थे निखिल आनंद गिरे।
1: अभी आप सुन रहे थे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आपके ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मन पसंद। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से। नौशाद के बोल हैं और शकील बदायूनी का संगीत है। फिल्म का नाम है सन ऑफ इंडिया। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश हम तक पहुंची है आप हैं जावा।

आर नगर दुर्ग से आरसी कामरे, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामरे। अब हमारे श्रोता हैं गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार जिला चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार जिला चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। और आप हमारे श्रोता हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना सन ऑफ इंडिया फिल्म का ये गीत। नौशाद के बोल थे और शकील बदायूनी का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत। वर्मा मलिक के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश से हम तक पहुंची है आप हैं खरवत्ते नोखा से मोतीमाला, लाल बिहारी, सुनील राय, बीरा सिंह, चंदन कुमार, कमलेश कुमार और कृष्णा कुमार।

और आप हमारे श्रोता हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फतिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। आप हैं डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्राधानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। आप हैं सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत। वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में बेटा फिल्म का ये गीत। समीर के बोल हैं और आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत।

और आप हमारे श्रोता हैं पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनवाद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खन्नी, मोहम्मद अल्तमश खन्नी, रमेश गोड़ और मोहम्मद सद्दाब खन्नी। आप हैं जामा मस्जिद रोड गोगांव से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। और आप हमारे श्रोता हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश रसिता।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है फिल्म एक दूजे के लिए। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है, आप हैं छोटी बलियां करजत मुंबई से अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले, आप हैं कपासीडा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फुलवाले, आप हैं लखमीनिया जिला बेगूसराय से समीम अहमद राइन, अखलाक अहमद फुलवाले और समस्त फुलवाले परिवार। और आप हमारे श्रोता हैं नूरमहल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज शिक्षिका, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। और आप हमारे श्रोता हैं कलेर बिहार से निकहत परवीन, सदफ आरजू और सादिया तस्नीम। और आप हमारे श्रोता हैं दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। तो आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में फिल्म एक दूजे के लिए।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में अभी आपने सुना एक दूजे के लिए फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आराधना फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं और एसडी बर्मन का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है फुटानी चौक नरहन एस्टेट समस्तीपुर से। आप हैं ललन मिश्रा जी, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन, पराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। और आप हमारे श्रोता हैं गंगा जिला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राय और आप हैं बुल्की वाली और फलना झा।

और आप हमारे श्रोता हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। आप हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने आराधना फिल्म का ये गीत सुना। आनंद बख्शी के बोल थे और एसडी बर्मन का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आन मिलो सजना फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से। आप हैं कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री।

और आप हमारे श्रोता हैं पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक के बाड़मेर से बबलेश पनवार, डैनिक पनवार और मनीष पनवार। आप हैं रामदेवरा से दिनेश चौहान और आप हैं डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावरी से आप हैं खुद बख्श खलीफा। और आप हमारे श्रोता हैं टाउनशिप सेक्टर भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और आप हमारे श्रोता हैं अनुश्री श्याम कुंवर।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना आन मिलो सजना फिल्म का ये गीत, निदा फाजली के बोल थे और उषा खाना का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है आप हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहारकर राही, श्रीमती सरिता गौहारकर, प्रणीता सिद्धांत गौहारकर, अर्जुन गौहारकर टुक टुक।

अब हमारी श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। और आप हमारी श्रोता हैं आकाशी सासाराम से, आलिया, इब्राहिम, कमाल, मिराज, सकीबा, निसार और पंकज कुमार। और आप हमारे श्रोता हैं संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। और आप हमारे श्रोता हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

और आप हमारे श्रोता हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू।

और आप हमारे श्रोता हैं ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़। तो आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आप तो ऐसे न थे। निदा फाजली के बोल हैं, उषा खन्ना का संगीत है।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ई मनपसंद अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनने के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% तक कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है

0: तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: We attach high importance to the welfare and well-being.
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
2: Peace and stability in the region.
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
4: The visit will provide an opportunity.
5: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
4: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
1: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
6: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
7: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस

0: योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली पांच है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है।

0: श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बलेश्वर प्रसाद एवं साथियों की आवाज़ से।

ललन सिंह के गाए इसी गीत के साथ ही भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है गज़लों का कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनूप जलोटा की आवाज़ से।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मेहंदी हसन के गाए इसी गीत के साथ ही गजलों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी।
1: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम आपके लिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, उन्ने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद इज

0: पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया। क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साज की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पाँच भाई थे और हम लोग पाँचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद ही इज ऑल्सो प्रीमियर सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौड़ एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौड़ ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस एक गौला टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी रादर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रुकुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबाजी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और कौन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तिरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला, उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश,
0: जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो।

0: मीला दिल पे मत ले यार, गज गामिनी रहना है तेरे दिल में वीर।
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी।

0: आज के फनकार आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंतरा मिश्रा एवं सोहम नायक की आवाज़ों में। एल्बम का नाम है हो नहीं सकता। रश्मि विराग के बोल हैं और उदीपन शर्मा का संगीत है।

अखिलेश कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना मदमस्त नैना एल्बम का ये गीत, गीतकार संगीतकार अखिलेश कुमार। और अब लीजिए सुनिए पलक मुच्छल और उत्कर्ष शर्मा की आवाज़ों में एल्बम तुझे चुन लिया का ये गीत, सतीश त्रिपाठी के बोल हैं

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: संदेश से पहले आपने सुना जुबेन नौटियाल की आवाज़ में एल्बम बेवफा से प्यार किया का ये गीत मनोज मंतशीर के बोल थे और पायल देव का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए मधुरा भट्टाचार्य की आवाज़ में बाबूजी एल्बम का ये गीत, गीतकार संगीतकार कवि संजय सिंह।

मधुरा भट्टाचार्य के गाए इसी गीत के साथ ही रसरंग कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। हमारा अगला प्रसारण अब से बस कुछ ही पलों में।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों से। फिल्म का नाम है वक्त। साहिर लुधियानवी के बोल हैं और रवि का संगीत है।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने वक्त फिल्म का ये गीत सुना। साहिर लुधियानवी के बोल थे और रवि का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने वक्त फिल्म का ये गीत सुना। साहिर लुधियानवी के बोल थे और रवि का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: श्रोताओं, किसी तकनीकी कारण से हम ये गीत आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और अब लीजिए सुनिए मुकेश की आवाज़ में आनंद फिल्म का ये गीत। योगेश के बोल हैं, सलील चौधरी का संगीत है।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

मुकेश की आवाज़ में आनंद फिल्म का भी आपने गीत सुना। और अब लीजिए सुनिए मेरी संग फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

मोहम्मद अजीज के गाए इसी गीत के साथ ही चित्रपट तराने कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है कल प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:53 पर वंदे मातरम से और प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम वंदन बार, और प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:30 पर। दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार प्रभात आप सुनेंगे प्रातः 8:00। आठ बजकर 15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम, और 8:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। प्रातः 8:45 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, और 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। 9:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार।

10 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार और 10:05 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक माधुरी और 10:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रसधार।

शाम की सभा की शुरुआत होगी 4:30 से कार्यक्रम विवरण के साथ और 4:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक माधुरी। दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं शाम 5 बजे और 5:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: महिला भानु का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा शाम 5:30 पर और शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। 6:05 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन। हमारी ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण समय होगा शाम 6:10 पर और 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत। 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। सात बजकर 25 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल और 7:50 समय होगा आपके ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मन पसंद का। 8:45 पर रात्रि आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कव्वाली का कार्यक्रम वंदगी और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित रेडियो साहित्य की पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग और 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। तो श्रोताओं, ये था कल प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। दिल्ली से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में

0: अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges